0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi 1. It's hot.

देखो वीकेंड और ये तारीख का जब मेल होता है ना तो एक अलग खुशी तो जरूर होती है। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और जब वीकेंड ऐसी तारीख पर आता है मतलब बिल्कुल दो तीन चार मतलब यार ये तो लॉटरी है आपकी खुद के पैसे की लॉटरी। वैसे बता दूं कि हाँ जी अब तो यार कतर में इतने सारे शॉपिंग की चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि यार आई एम श्योर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, वेकेशंस पे जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो या अपने होम टाउन जा रहे हो, तो फिर ये बिल्कुल सही वक्त है कि भाई अब अच्छे से वीकेंड का इस्तेमाल करें। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि भाई आप ये जाइए इवेंट देखिए या वो कीजिए, मैं तो ये कहूंगी भाई ये वीकेंड तो बस खूब सारे दिल खोलकर शॉपिंग करो। और कहा ये भी जाता है साइंटिफिकली कि शॉपिंग करने से ना बिल्कुल स्ट्रेस जो है वो कई लेवल्स कम हो जाता है, तो बस हैव अ स्ट्रेस फ्री शॉपिंग वीकेंड। फिलहाल तो यार शो की शुरुआत अभी तो हुई है, बहुत सी बातें करेंगे किधर क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या हो रहा है हमारे कतर में, सब कुछ राइट हियर आपके सुबह वाली आदत यानी मिर्ची मॉर्निंग्स पर माइक से दिल तक आफरीन के साथ। इट्स हॉट

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता, अब रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं है? राकेश तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारे बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

बचपन में अगर मम्मी को कहते थे ना बोर हो रहा है मम्मी, तो मम्मी यही कहती थी, जाओ नीचे जाकर दोस्तों के साथ खेलो। और आज के बच्चे, वाह रे वाह, बोर हो रहा है बस कहने का इन्हें मौका ही कहाँ मिलता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड टॉकिंग अबाउट हमारे बच्चे कतर के जो फिलहाल छुट्टियां मना रहे हैं, बस इनकी जस्ट छुट्टियां शुरू ही गई है और उसी चलते कतर का सबसे बड़ा टॉय फेस्टिवल इज बैक दिस समर। वेल मैं बता दूं, ये 1st of July से लेकर 31st of July तक रहने वाला है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, दैट इज DECC। संडे टू वेडनेसडे इसकी जो टाइमिंग है दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक है। और अगर वीकेंड की टाइमिंग्स में बताऊं, जो है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वो है दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। और टिकट्स बिल्कुल 50 कतरी रियाल। अगर देखा चाहे तो यार, हम बच्चों को कितनी ही बार ये समर वेकेशंस में हम मॉल्स लेकर जाते हैं, प्ले जोन्स लेकर जाते हैं, और 50 क्या, वहां पर तो 200-250 ऐसे ही खर्च होते हैं। आप सोचिए, सिर्फ 50 कतरी रियाल इनकी एंट्री टिकट है, और वीकेंड पे चलिए 70 है, लेकिन उसमें ये इतनी सारी चीजें कर सकते हैं वहां पर। इतने सारे ब्रांड्स हैं टॉयज के, लाइव स्टेज शोज है, कैरेक्टर्स मीट एंड ग्रीट है, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस है, शॉपिंग है, कॉम्पिटिशन है, और बहुत सारे थीम जोन्स। सो मेरे ख्याल से ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है। मेरा दिल तो हमेशा से बच्चा है, और ऐसी जगह पर ना मैं अपने आप को भूल जाती हूँ और वो छोटी वाली आफरीन बन जाती हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ माइक से दिल तक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची। It's hot.

0: Mirchi Mornings, brought to you by KIMS Health Medical Center.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
4: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: John Abraham, आपके हिसाब से the top fit boys of the Hindi film industry.
2: First reference is always going to be Varun Dhawan and I'll tell you why. क्योंकि वरुण का जो फिजीक है वो बहुत ही proportionate है. उसके legs बहुत ही strong है. Tiger Shroff, fantastic body. Ranveer Singh, extremely, extremely fit. And of course, Hrithik Roshan. Honestly, amongst all these, including myself, I think सबसे fittest इंसान हमारे industry में is Akshay Kumar. And I mean holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको Mount Everest पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who'll survive and come out.
1: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
1: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
0: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
2: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
3: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
4: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: सोनू निगम की एक खूबसूरत आवाज में व्हाट अ स्टार्ट टू दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। एंड इट इज वीकेंड, आई हाय वीकेंड जैसे ही आता है ना, मतलब इस बार का वीकेंड तो मुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी लगा है एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और अगर आप कोई अभी उस वाले कैटेगरी में हो जिन्हें बारबेक्यू करना बहुत पसंद है, भले ही आपका बारबेक्यू क्यों ना हो रहा हो, वो रात के वक्त कर रहे हो, तो भाई देख लो भाई आज का वेदर क्या है बिफोर यू प्लान एनी आउटडोर्स।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट,
0: देखिए वेदर ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 31 पर रहेगा। एक्चुअल जो फील है वो 35 डिग्री से फिलहाल आप महसूस कर रहे हो। ह्यूमिडिटी जो है आजकल कम चल रही है, 24% पर है। हवाएं भी धीमी धीमी सी है, एक 11 किलोमीटर। मतलब ह्यूमिडिटी कम होने का रीजन ये होता है जब आप, अब उसके बाद ये होता है कि ड्राइनेस बहुत होती है हवाओं में। सो जस्ट टेक गुड केयर। और गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग के मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, अपने नाम भी लिख लिया करो, नंबर एंडिंग 8332। वेरी गुड मॉर्निंग। देन आई हैव समवन सेइंग अ गुड मॉर्निंग, आदिल अहमद का भी आ रहा है मैसेज यहाँ पर। सो वेल वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, अगर आप भी कहना चाहते हो तो 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर। चलिए शो को आगे बढ़ाते हुए माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: पल मिर्ची खड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:03 की तरफ और आप सुन रहे हो आफरीन को. कमिंग अप नेक्स्ट आफ्टर दिस सॉन्ग गर्मा गर्म फ्रेश अपडेट्स फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर. तब तक के लिए अगला गाना एंजॉय कीजिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

धुरंधर का ये गाना एंड धुरंधर सारी टीम्स जो है वो आगे एक एक करके जाती जा रही है। देखो मेरे ख्याल से ये फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है 2026 नॉकआउट स्टेज ने एक बात तो प्रूव कर ही दी बॉस, दैट अब फेवरेट्स को भी ना हर मिनट अपनी सीट बेल्ट बांधनी पड़ रही है एंड दे रियली हैव टू बी ऑन गार्ड। इट्स नॉट गोना बी इजी। और ये जो फ्रेशर्स मैं कह सकती हूँ, जो अंडरडॉग्स है, दे आर गिविंग अ टफ टाइम। अब कल के राउंड ऑफ 32 की बात करते हैं जहां पर इंग्लैंड ने डीआर कॉन्गो को 2-1 से हरा दिया, लेकिन जीत इतनी आसान नहीं थी। यस, हैरी केन के लेट गोल्स ने इंग्लैंड को बचा लिया। अब बेल्जियम का भी कुछ ऐसे ही हाल था, जबरदस्त कमबैक करते हुए सेनेगल को एक्स्ट्रा टाइम में 3-2 से हरा दिया। अब जबकि सेनेगल 2-0 से लीड कर रही थी, ऐसा कुछ हाल था मैच का, एंड देन इंग्लैंड ने बेल्जियम ने इस तरह से कमबैक किया है इस मैच में। वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट द को होस्ट यानी यूएसए की बात करते हैं। इन्होंने 10 प्लेयर्स के साथ भी बोस्निया एंड हर्जेगोविना को 2-0 से हरा कर राउंड ऑफ 16 का टिकट पक्का कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कमिंग 24 आवर्स। अब क्या होने वाला है, अब तो ट्रिपल धमाका देखने वाले हो बॉस आप, और क्योंकि वीकेंड है एंड आई एम श्योर आप ये सारी मैच लेट तक भी देख सकते हो। स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया है दूसरी तरफ द टफेस्ट मैच। आई डोंट नो हु इज गोना विन हियर एंड आई थिंक सो द रिजल्ट्स कुड बी क्लियर एंड कुड बी नॉट एज वेल इन दिस मैच, दैट इज पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया। भाई दोनों टक्कर की टीम्स हैं, मतलब क्रोएशिया अच्छी टीम है, आई एम श्योर बहुत अच्छा फाइट देगी एंड कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते। स्विट्जरलैंड वर्सेस अल्जीरिया है, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। वेल स्पेन अपनी टाइटल चैलेंज को जिंदा रखना चाहेगा जरूर। पोर्चुगल एक इमोशनल मैच खेलेगा एज अ टीम कंटिन्यूज टू ऑनर द मेमोरी ऑफ डियोगो जोटा, वाइल क्रोएशिया और स्विट्जरलैंड भी नॉकआउट प्रेशर में अपनी कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे। वेल आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हो बताइए मुझे जरा व्हाट्सएप पर। 5000186 इज माई नंबर। तब तक के लिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और वीकेंड का जो एक्साइटमेंट है ना उसको बरकरार रखते हैं राइट हियर माइक से दिल तक आफरीन के साथ अनमिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua, la burga.
1: Milci, burga. हेलो,
2: इज दैट वर्षा?
1: हु इज दैट?
2: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारे गम पा। हमारे ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती
2: हैं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सा, स्टार्ट। चाहिए ऊ चाहिए
1: ओ,
0: तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: my God, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: सोनाली ठाकुर की आवाज में लुटेरा मूवी का ये खूबसूरत सा गाना। अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं बिल्कुल मेरी तरह, तो फिर ये गाने में एक खूबसूरत सी चीज ये है कि बहुत ही मीठी सी आवाज, मीठा सा गाना, लेकिन वो जो बीट्स तबले का कहिए या ड्रम्स का जो था, ये गाने में कितना इम्पैक्टफुल था। ऐसे ही अब आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो अगला गाना मैं सुनाऊंगी ना आपको, तब आपको समझ में आएगा कि यार दिस सॉन्ग ऑल्सो हैज अ सिमिलर इम्पैक्ट। एंड प्लेइंग द नेक्स्ट ट्रैक इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, जो अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में है, फ्रॉम द मूवी लकी, नो टाइम फॉर लव। एंड दिस सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय अदनान सामी। जो मैं तबले की आवाज बता रही थी या ड्रम्स जो भी यूज किया गया है, द बीट्स, दिस वन,
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा।
0: एंजॉय दिस ट्रैक।
1: धीरे धीरे

0: जावेद अली और कीर्ति से
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: इनकी आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और जस्ट इमेजिन कीजिए, समंदर के लहरों के पास, तारों के नीचे, खुले आसमान के नीचे, कितना ड्रीमी लग रहा है ना। वो ये ड्रीमी नहीं, इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा फन भी है। वेरी गुड मॉर्निंग कतर एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, वीकेंड आ गया है और वीकेंड में शाम के वक्त मैंने तो अच्छा ही लगता है बाहर। अभी तक वो उतनी ज़्यादा शदीद वाली ह्यूमिडिटी ऐसी शुरू तो हुई नहीं है। एंड एट दिस पॉइंट अगर समंदर के पास आप जाओगे रात के वक्त खुले आसमां के नीचे, हाय, इट्स अनदर फीलिंग यार। और यही आप अपने फैमिली के साथ करें तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा ना, क्योंकि ऐसे ही एन इवनिंग ऑफ फैमिली फन अवेट्स एट 974 बीच। यस, यहाँ पर आउटडोर मूवी कहिए, फेस पेंटिंग कहिए, एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग कहिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। देखिए, जनरल बीच एंट्रेंस जो है वो तो अप्लाई करेंगी यहाँ पर, जैसे अडल्ट के लिए 35 का ट्यूटोरियल है, बच्चों के लिए 6 ईयर्स ऑनवर्ड्स अप टिल 14 ईयर्स 15 का ट्यूटोरियल है, और जो टॉडलर 6 ईयर्स एंड बिलो जो है उनके लिए बिल्कुल फ्री एंट्रेंस है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप किया गया है, ये सिर्फ 3rd of July के लिए है 7 PM ऑनवर्ड्स। तो अगर आप कल शाम को कोई ऐसी पिकनिक वाली जगह देख रहे हैं जहाँ पर एंटरटेनमेंट का जिम्मा बस उठा लिया जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस वहाँ पहुँच जाना है, तो दिस इज़ द प्लेस बच्चों के लिए। प्रॉबेबली वन ऑफ द फ्यू लास्ट आउटिंग्स जो आप खुले में कर सकते हो, जैसे आउटडोर्स में कर सकते हो, नहीं तो फिर उसके बाद इंडोर ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं हमारे कतर में। वो क्या है वो भी बताऊंगी थोड़ी देर में, तब तक के लिए आपको बने रहना है मेरे साथ, यानी माइक से दिल तक आप ड्रीम के साथ राइट हियर ऑन मिर्ची प्लेइंग नेक्स्ट ट्रैक मधुमती बागची सचिन जिगर की आवाज में। सुनते रहेगा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद इरशाद।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
4: खूब मिलेगा,
0: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: वेल मेकअपा जी की आवाज शेफाली का साथ, व्हाट अ सॉन्ग, अ पावर पैक्ड सॉन्ग रिक्वायर्ड राइट ऑन दिस डे यानी वीकेंड पर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है जाइटी रमनची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, फिलहाल वो वक्त हो चला है जहां पर आप, आई एम श्योर यू आए हो, रेडियो ट्यून इन किया है और पता है कि अब आफरीन कुछ सवाल पूछने वाली है और हम एब्सोल्युटली रेडी है, बिल्कुल ऑन माय गेट्स गुड की तरह, बस कह दे और हम यहां पर आंसर दे देंगे। लेकिन लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, आज का सवाल इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ऑलरेडी हम रिलैक्सिंग मोड में आ चुके हैं तो मैंने सोचा कि चलो आज तो डिफिकल्ट पूछा ही जाए। सीन सुना रही हूँ, ठीक है, और आपने गेस करना है कि ये सीन कौन सी मूवी से है, आवाज किसकी है वो तो मैं बता ही दूंगी। तो चलिए रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये सीन सुनो।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
2: मुझसे जो दुश्मनी मोल लेता है उसमें ऊपर वाला रहम तो कर देता है मगर मैं नहीं। आज के बाद अगर तूने मेरी दोस्त की तरफ आग भी उठाकर देखा तो यमुना में पानी नहीं, तेरा खून बहेगा।
0: ओ माय गॉड, कौन है ये जो इतने ज्यादा गुस्से में है? वेल भाई जान है ये हमारे, मैं ये बता रही हूँ क्योंकि सीरियसली ये बताने के बाद भी आई एम श्योर आप इसको बिल्कुल गेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ हिभा समीर है यहाँ पर जिन्होंने मैसेज कर दिया है। मैं तुम्हारी जगह रहती ना, मैं नहीं कर पाती इतना जल्दी। वेल यू गाइज आर सुपर कूल। 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर और जबरदस्त भाई यहाँ पर मैसेजेस आर जस्ट फ्लोइंग इन एंड आई थॉट कि मैंने तो डिफिकल्ट पूछा है, ये तो कुछ और ही हो गया। सुनो वरीज, सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मजा तो ये आ रहा है कि गलत भी आ रहे हैं। नो वरीज, कीप देम फ्लोइंग इन। 5000186 भाईजान की मूवी से एक मैंने आपको डायलॉग सुनाया था और भाईजान की तो कई सारी मूवीज में इस तरह से गुस्से वाले डायलॉग्स है ना। चलिए दिस इज फॉर ऑल द भाईजान फैंस, सल्लू मियां के फैंस जितने भी हैं। कमिंग अप नेक्स्ट ट्रैक वाजिद की आवाज में, दिस वन इज फॉर यू। He's a superman. Mike Seedil tak Afreen ke saath bane rahiyega on Mirchi. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, शाहरुख खान की मूवी का ये गाना पठान से अरिजीत सिंह, सुकृति कक्कर, विशाल कक्कर की आवाज में, बट हम तो यहाँ पर दूसरे खान की बात कर रहे थे। वो दूसरे खान, आमिर खान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सल्लमिया की बात कर रही हूँ। और थोड़ी देर पहले फॉर सलमान फैंस, सलमान खान के फैन के लिए मैंने जबरदस्त एक गाना भी सुनाया था यहाँ पर। सो वेल, कौन सी मूवी है आज, किसकी बातें हो रही है, ये तो आप बताओगे, मैं थोड़ी ना बताऊंगी, लेकिन हाँ डायलॉग जरूर सुनाऊंगी। सो हियर इट गोज, रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई।
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
2: मुझसे जो दुश्मनी मोल लेता है उसमें ऊपर वाला रहम तो कर देता है, मगर मैं नहीं। आज के बाद अगर तूने मेरी दोस्त की तरफ आँख भी उठाकर देखा तो यमुना में पानी नहीं, तेरा खून बहेगा।
1: ओह माय गॉड, मुझे तो लगा था एंग्री यंग मैन सिर्फ हमारे बच्चन साहब थे, फिर सनी देओल थे, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही निकले। कौन सी मूवी है ये? ये तो चलिए सुनते हैं हमारे लिसनर कम दोस्त से।
3: हाँ जी,
1: That's right.
3: Sajid Nadiadwala. He is for the directorial debut movie for Sajid Nadiadwala. He has produced
1: many. बिल्कुल सही.
3: And a very good friend of Salman Khan.
1: इज राइट अख्तर, और आपकी तरह और लोगों ने भी यहाँ पर मैसेज किया है, महबूब शरीफ, मोहम्मद यूसुफ खान, और आपका जवाब गलत है, गौरव नहीं है ये मूवी। एंड देन वी ऑल्सो हैव योर, और किसका मैसेज है ये, नंबर एंडिंग 774, अपना नाम लिख लिया करो भाई अगली बार से, समीर का मैसेज है, रिजाल हुसैन का मैसेज है, एंड सभी का कहना यही है कि हाँ जी, दिस इज मूवी किक, एंड क्विक मूवी से ये मुझे गाना बहुत पसंद है, जैस्मिन सनलस की आवाज़ में। जैस्मिन सनलस तो अब जाके कहीं बहुत फेमस हो रही है, लेकिन दिस वॉज द सॉन्ग जो पहले इन्होंने गाया है कितने साल पहले। एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

0: राघव चैतन्य महमूद की आवाज में ये गाना राइटर अनमोल जी फ्रॉम द लेटेस्ट मूवी दैट इज कॉकटेल 2 एंड शुक्र है कोई नया गाना तो हमें पेश किया गया, क्योंकि मूवीज तो हमें सब पुराने टाइटल्स को ही 2 और 3 लगाकर पेश की जा रही है और इनफैक्ट गाने भी एक नहीं दो गाने दो गाने इस मूवी में हमें पुराने ही चिपका दिए गए हैं और यही कहते हुए कि हाँ भाई नॉस्टैल्जिया है, नो बॉस डोंट टच आवर क्लासिक सॉन्ग्स है ना। ऑन दिस नोट चलिए शो को आगे बढ़ाते हुए मिर्ची घड़ी का इशारा कर रहा है सुबह के 8:03 की तरफ और अगला गाना ये होता है ना कि भाई देखो ओजी जो होता है ना कंपोजर्स वो ओजी ट्रैक्स ही लेकर आते हैं, जैसे अदनान सामी तब भी मैजिक चलाते थे अपने इंडी पॉप सॉन्ग्स के साथ और अब भी कुछ नया पेश करने की कोशिश तो कर रहे हैं।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: Well, presenting lipstick, Adnan Sami ka latest track, Mike se dil tak afreen ke saath bane rahiyega, it's hot. Hey!

देखो, एक अच्छे म्यूजिशियन की यही निशानी होती है कि वक्त के साथ ये कैसे आगे बढ़ते हुए हर एक डिकेड के लिए, हर एक जनरेशन के लिए सही म्यूजिक लेकर आते हैं. एंड दैट्स अदनान सामी फॉर यू. And well, this is Afreen for you, right here on Mirchi Mornings. लेकर आई है वीकेंड का मैजिक. यानी वीकेंड में हमारे कतर में बहुत रौनक लगी है यार. मतलब गर्मी है तो ऐसा थोड़ी ना कि घर में बैठे रहे, गर्मी में परेशान होते रहे. नहीं जी नहीं, बाहर निकलो यार, मजे करो. वैसे बता दूं कि क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप का ये बड़ा ही जबरदस्त चल रहा है माहौल, वो बात थोड़ी है कि जो पहले थी 2022 में, वो तो एक अलग ही थी यार. वो एक सपनों वाली दुनिया थी, सच कह रही हूँ, जिसमें हम आप और हमें मतलब इतना जबरदस्त मौका मिला है 2022 का वर्ल्ड कप साक्षात यहाँ पर खुद एक्सपीरियंस करने का. ओके, आई एम गोइंग बैक इन नॉस्टैल्जिक मोड में. वो बताने थोड़ी ना आई थी, मैं ये बताने आई थी कि फैन जोन जो है हमारे अलमाहा आइलैंड पर, वो बहुत जबरदस्त है. वहां पर जाकर आपको पुरानी यादें जरूर याद आएगी. विजिट कतर का ये फैन जोन है, टिकटेड है, बट अपने आप में ऑफ कोर्स एक अलग ही वाइब लेकर आता है. इफ यू आर दोज हार्डकोर फुटबॉल फैंस, यू शुड गो एंड वॉच देयर मैच आउट देयर विद अदर फुटबॉल फैंस लाइक जस्ट लाइक यू. ठीक है, ये एक हो गया. उसके बाद में कल जो मैं बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले भी, 974 बीच पर अ नाइट अंडर द स्टार्स. हाय, मतलब अगर हिंदी में कहूँ तो भाई खुले आसमां के नीचे, तारों के नीचे खूबसूरत सी शाम, यही है वहां पर जहां बहुत सारे इवेंट्स है, मूवी स्क्रीनिंग होने वाली है, स्टोरी टेलिंग है, फेस पेंटिंग है, ऑल इन ऑल एक पूरा फैमिली पैकेज है. तो ये भी टिकटेड है. टिकट जो है 35 कथरियाल एडल्ट्स के लिए और 15 कथरियाल बच्चों के लिए है. तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट कतर टॉय फेस्टिवल, कल से ही बड़ी धूम से शुरू हुआ है. DCC में तो वो बड़ा वाला है ही जहाँ पर ब्रांड्स है सारे, और इट्स मैसिव, लेट मी टेल यू, एंड इट्स इनसेन. मतलब अगर आप जाओगे ना, यू आर इन फॉर अ ह्यूज सरप्राइज. यू एज अ किड, मतलब बचपन में सोचते थे ना कि यार हॉट व्हील्स की ये वाली कार होनी चाहिए थी, बाबी का ये डॉल हाउस मुझे चाहिए था. एंड जस्ट यू सी, इट्स सो इजीली अवेलेबल फॉर ऑल द किड्स आउट देयर. तो थोड़ा सा अपना भी बचपन जी लेना वहाँ पर, है ना. और कतर टॉय फेस्टिवल का जो एक्टिवेशन है, इट्स नॉट ओनली DCC, इट्स हैपनिंग अक्रॉस कतर इन ऑल द मॉल्स आउट देयर. ये तो हो गई ये बात, और उसके बाद में बात करते हैं. देखिए, तीबल हजम जो अल हजम मॉल में चल रहा है, भाई वॉट अ क्रेज भाई. कतर वाले इतने दीवाने हैं परफ्यूम्स के, उसमें मैं भी आती हूँ. मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मैं खुद उसमें आती हूँ. सो यस, यू शुड नॉट मिस दैट. आई हैड बीन देयर एंड आई जस्ट फील लाइक आई शुड गो बैक अगेन देयर. सो सो मेनी थिंग्स आई टोल्ड यू यार, व्हाट यू कैन डू दिस वीकेंड इन कतर. मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया भाई, अब गाना सुनने का बात. So let's hear this. Let's go on, Mirchi. It's hot. Let's go.

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल
2: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। अच्छा चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा
2: यार रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

अरे क्या इतना शोर मचा के रखा है, आई नहीं लो मैं आ भी गई और मैं भी नहीं, इनफैक्ट नया महीना भी आ गया है, तो चलिए काम की बात भी लेकर आती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए नया महीना आ गया है, इनफैक्ट सेकेंड डे भी आ गए हम नए महीने पर, लेकिन नया महीना बहुत सी नई चीज़ें लेकर आया है, नए कुछ तब्दीलियां लेकर आया है, वो कुछ इस तरह से है। देखिए एक्सचेंज रेट में बता दूं आपको कि एक कतरी रियाल के बदले इंडियन रुपीस अब मिल रहे हैं 26.05। यस आई एम राइट, मेरे ख्याल से मैंने कल 25 की जगह 26 कह दिया था, लेकिन अब आज सही में 26.05 हो चुका है। हर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 76.85 पर है, श्रीलंकन रुपीस इज एट 92.10, ये भी काफी बढ़ गया है, और अगर बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.97 पर है, नेपाली रुपीस 41.63 पर है। ऑल इन ऑल ये देख रही हूँ भाई छुट्टियों पर जाने का सीन चल रहा है सबका, और यहाँ पर एक्सचेंज रेट बढ़ रहे, इसका मतलब और इशारा सिर्फ एक ही तरफ है कि जो पैसे आप वहां पर भेजने वाले हैं आपको ज्यादा मिलेंगे वहां पर ज्यादा मजे करने के लिए, ठीक है ना। तो वो जो ज्यादा पैसा ना उससे आप मेरे लिए ना मिठाई का डब्बा लेकर आइएगा जब आप लौटोगे, ठीक है, डील। राइट माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट योर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, it's hot. A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
7: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो भाई, हम तो हर रोज सबको छोड़ छाड़ के सुबह में आ जाते हैं आपके पास, आपको एंटरटेन करने के लिए। राइट हियर जुड़ गई है आपके साथ जो सेगमेंट्स होता है ना, जब मैं खेलती हूँ और ये सारी चीजें, तो बस ये मुझे बहुत पसंद है। सो वेल, रेडी है आप पहचानने के लिए कौन है ये, किसकी आवाज अब आफरीन सुनाने वाली है? बस यही है मेरे गेम का नाम, पहचान कौन, ठीक है ना? चलिए आज किसकी आवाज है, चलिए सुनते हैं।
2: जब मैंने महिमा जी को चुना तो इनको मैंने 3 दिन के बाद स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया, फिर मैंने इनको देसी कपड़े पहनाए जो गंगा के कपड़े हैं, वहाँ से मैंने इनका टेस्ट लिया, स्क्रीन टेस्ट। जब मैं शूट कर रहा था तो कैमरे की तरफ जब भी देखती थी तो एक मैजिक आता था, वो मैजिक था।
1: All right. I think so. इन्होंने खुद काफी डिटेल्स दे दिए ना कि ये कौन है। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ ये एक्टर डायरेक्टर कोई कौन है क्या है, ये आपको पहचानना है, ठीक है? इन्होंने अपने आप में छोटे मोटे हिंट्स दे दिए हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रही थी। और एक कनेक्शन बताती हूँ, इनका कनेक्शन 90s से जुड़ा हुआ है, 5000186। बताइए ये कौन से दिग्गज है। एंड आई हैव गॉट अ मैसेज फ्रॉम विवेक, एंड विवेक तुम्हारा आंसर जो है ना 100% सही है। सो वेल, वेटिंग फॉर अदर आंसर्स, 5000186 पर भेजिए अपने आंसर्स। व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं या फिर टाइप करके भी भेज सकते हैं, लेकिन अपना नाम जरूर बताइएगा। मीनवाइल गुरु और निकिता गांधी की आवाज में ये गाना माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
2: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
1: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
2: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
1: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
2: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और कि पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
1: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अमुशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: तब से मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल सोनू निगम और कृष्ण कली साह की आवाज में ये गाना परदेसिया फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी। और आपके साथ जुड़ गई है आपकी सुबह वाली आदत यानी सिंपली आफरीन राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और मजेदार गेम जो खेलती हूँ मैं इस वक्त पर, मजा आता है मुझे जब सही आंसर्स आते हैं, और जब गलत आंसर्स आते हैं ना तब और भी ज्यादा मजा आता है। सो वेल यहाँ पर आज मैंने एक आवाज सुनाई थी, और आज मैंने एक आवाज जो थी कोई एक्टर या एक्ट्रेस की नहीं सुनाई थी, किसी और की ही सुनाई थी। चलिए सुनते हैं और फिर उनके बारे में बातें भी करते हैं। यहाँ पर
2: जब मैंने महिमा जी को सुना तो इनको मैंने 3 दिन के बाद स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया, फिर मैंने इनको देसी कपड़े पहनाए जो गंगा के कपड़े हैं, वहाँ से मैंने इनका टेस्ट लिया स्क्रीन टेस्ट। जब मैं शूट कर रहा था तो कैमरे की तरफ जब भी देखती थी तो एक मैजिक आता था, वो मैजिक था। मेरे असिस्टेंट ये कहने लगे सर शी इज टू शॉर्ट। मैं बोला मुझे यही चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं पोटला से 400।
1: ऑल राइट, बहुत सारी बातें इन्होंने अपनी मूवी के बारे में बताई, बहुत सारी बातें इन्होंने इस एक्ट्रेस के बारे में बताई, और बहुत बड़ा हिंट दिया है यार कौन से डायरेक्टर है ये बाय द वे, ठीक है ना। मैं एक्टर कहने वाली थी लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, सो दिस इज नॉट एन एक्टर एक्ट्रेस, दिस इज अ डायरेक्टर, 90s की ये डायरेक्टर है, मैंने आपको हिंट भी दिया था। और बहुत सारे यहाँ पर मैसेजेस आए हैं माय फ्रेंड्स। इम्पा का कहना है ये आवाज संजय कपूर की है। नहीं, संजय कपूर की कहाँ भाई, ये आवाज तो वो है जिन्होंने परदेस मूवी बनाई है। परदेस मूवी में गंगा का किरदार किसने निभाया था, महिमा चौधरी ने। और महिमा चौधरी को किसने इंडस्ट्री में लेकर आए है, वो है ओनली सुभाष घाई। और ये सुभाष घाई बता रहे थे कि जब उन्होंने महिमा चौधरी को सिलेक्ट किया था, और मजे की बात ये है पता है आपको दैट जब सुभाष घाई ने महिमा को सिलेक्ट किया था एंड ही बिलीव दैट एम नाम की जो हीरोइंस है ना उनके लिए लकी है। अब वो मीनाक्षी शेषाद्री क्यों ना हो, मनीषा कोयराला हो, माधुरी दीक्षित हो, सो ही थॉट कि भाई तुमने भी ना अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। तो रीटू कपूर से, रीटा या रीटू कपूर था, रीटू चौधरी था, उससे इन्होंने महिमा चौधरी रख लिया। एंड आई थिंक सो महिमा क्वाइट सूट्स हर, है ना। वेल बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है, जैसे जाहिर ने, ताहिर ने, देन आई हैव योर निकिता ने मैसेज किया है, नदीम का मैसेज है, विवेक का मैसेज है, एवरीवन सेज दैट दिस इज सुभाष घाई। एंड आई एम सो कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सा गाना बजाऊं परदेस मूवी का। चलिए आपको ऑप्शंस देती हूं। ऑप्शन नंबर 1 ये, या फिर ऑप्शन नंबर 2 ये, या ऑप्शन नंबर 3। 5000186 इज माई नंबर। 1 ये दिल है दीवाना, 2 दो दिल मिल रहे हैं, या मेरी महबूबा। भाई जो पहले यहाँ पर बताएगा उन्हीं का मैं यहाँ पर गाना बजाने वाली हूँ। सो वेल आई हैव गॉट एवरीवन सेइंग कि भाई हमें ये वाला गाना सुनना है। 2-3 मैसेजेस आए हैं आपके लिए। अगला गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। Enjoy this beautiful track on Mirchi Mike Siddil Tagafreen ke saath, it's hot.

0: अंजलि, बचिए हेल्पलाइन, बोल।
1: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा BF मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
0: आए, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: वेल शाश्वत सरदेव की म्यूजिक, मधुबंदी बागची की आवाज, जस्मिन सनलस का साथ, धुरंधर का ये गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची। और वक्त हो चला है कि शरारत नहीं करें, हम बातें करें यहाँ पर। वो बातें अलग बातें, हमारी शरारत भरी रहती है, लेकिन वक्त तो बहुत साथ देता है ना। फिलहाल 9:05 हो रहे हैं मिर्ची घड़ी में।
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: And mera to waqt ho chala hai ki main aapko football ke updates de do ab. देखो, ऑल द फुटबॉल फैंस आउट देयर, वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज ने ये बात तो प्रूव कर ही दी बॉस, दैट अब फेवरेट्स को भी ना हर मिनट अपनी सीट बेल्ट बांधनी पड़ेगी। दे नीड टू रियली बक अप, बिकॉज द अंडरडॉग्स आई वुड से आर गिवन एंड गिविंग अ रियल टफ टफ टाइम। मतलब आसानी से इनके जीत हासिल नहीं हो रही है। इनफैक्ट बड़े बड़े जायंट्स भी अब गेम से बाहर हुए हैं, जर्मनी जैसे, देन नेदरलैंड्स जैसे, राइट? सो टॉकिंग अबाउट कल के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड ने DR कॉन्गो को 2-1 से हरा दिया है। लेकिन वही जैसे मैं कह रही थी, इनकी भी जीत इतनी आसान नहीं थी। हैरी केन के लास्ट मिनट लाइक लेट गोल्स ने इंग्लैंड को एक्चुअली बचा लिया। सेम थिंग सिमिलरली हैपेंड विद बेल्जियम, इन्होंने भी जबरदस्त कमबैक कर दिया भाई। सेनेगल को एक्स्ट्रा टाइम में 3-2 से हरा दिया। वेल डू यू व्हाट द स्कोर्स वर व्हेन इट स्टार्टेड, 2-0 थे, सेनेगल इतना लीड कर रही थी और धड़ाधड़ से आकर फिर बेल्जियम ने 3 गोल्स कर ही दिए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द को होस्ट यूएसए। यूएसए ने 10 प्लेयर्स के साथ भी बोस्निया एंड हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर अपनी टिकट जो है राउंड ऑफ 16 में एकदम पक्की वाली कर ली है। सो ये तो बात हो गई हमारे कल की। अब बात करते हैं आने वाले मैचेस की। अगले 24 घंटे में ट्रिपल धमाका होने वाला है बॉस। स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया ये एक मैच है, पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया, अब दोनों भी एकदम जबरदस्त टीम्स हैं, ये बहुत मजा आने वाला है देखने के लिए। आई एम श्योर क्रोएशिया इज गोइंग टू गिव अ वेरी टफ फाइट। Also talking about Switzerland versus Algeria again, you cannot say यहाँ पर भी कुछ उल्टा पलटा हो सकता है। Well, यहाँ जहाँ स्पेन अपनी टाइटल चैलेंज को जिंदा रखना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ पोर्चुगल एक इमोशनल मैच खेलने वाला है, एज अ टीम कंटिन्यूज टू ऑनर द मेमोरी ऑफ डिएगो जोटा। वाइल क्रोएशिया और स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो नॉकआउट का प्रेशर ये दोनों में काफी ज्यादा है। सो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो आज की मैच में, लेट मी नो। 5000-1896 पर व्हाट्सएप नंबर है मेरा, कि क्या लगता है आफ्रीन पोर्चुगल जीतेगी, क्रोएशिया जीतेगी, स्विट्जरलैंड जीतेगी, अल्जीरिया जीतेगी, स्पेन जीतेगी और ऑस्ट्रिया जीतेगी, बताओ मुझे। चलो फटाफट से मीनवाइल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। धमाल चल रहा है फुटबॉल वर्ल्ड कप में, तो धमाल 4 का गाना आपके लिए यहाँ पर।
1: मिर्ची
2: जब हर बीट में हो तड़का, तब बनती है चटनी।

इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपीट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La
1: virpa la burga. Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी,
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: एड्रेस दे अपना, वो कर दे, मैं तो कर दूंगा।
2: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करो बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
7: हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो मैं जानती हूँ ऑप्शंस कम हैं, लेकिन अपने पास सलूशन है ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और बात करते हैं OTT कंटेंट के बारे में, जहां वी नो कि ज्यादा कंटेंट जो है इट्स मोर एडल्ट्रेटिंग, वायलेंस है, थ्रिलर, क्राइम एंड ऑल दिस थिंग्स जो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। लेकिन आफरीन है तो टेंशन नहीं बॉस, लेकर आई हूँ नए कुछ ऐसी चीजें जो आप फैमिली के साथ देख सकते हो।
2: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
3: फ्रेश है, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
4: अरे मार्केट में नया क्या है?
1: देखो नया मेरे लिस्ट में ये है ग्राम चिकित्सालय सीजन 2। सीजन 1 भी आ चुका था। इट इज बेस्ड ऑन अ डॉक्टर हु सेट अप इन अ रूरल बैकग्राउंड। बिल्कुल थोड़ा सा आपको पंचायत की झलक इसमें नजर आएगी, जो बेसिक थीम है उसी की तरह है, लेकिन थोड़ी स्टोरी थोड़ी एम्पैथिक जाती है। अच्छी स्टोरी है इसकी, एक्टर बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें आपको मेन प्रोटैगनिस्ट के किरदार में जो है वो अमोल पराशर नजर आते हैं। एंड क्योंकि ये TVF की ही पेशकश है, सो यू आर गोना ड्रॉ क्वाइट सम comparison with the season of panchayat. ठीक है, पंचायत किसको नहीं पसंद है, and I'm sure you'll like ग्राम पंचायत as well. Amazon Prime पर ये स्ट्रीम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव फॉर यू अगेन स्ट्रीमिंग ऑन सोनी लिव, दैट इज परफेक्ट फैमिली सीजन 2। अब इसका भी स्टारकास्ट बहुत ही बढ़िया है, मनोज पावा, सीमा पावा, नेहा धूपिया, गुलशन देविया, ये सारे कुछ नजर आएंगे इन दिस साइकोलॉजिकल कॉमेडी ड्रामा। सो अनदर सीजन, अनदर वेब सीरीज जो फैमिली के साथ आप देख सकते हो। कमिंग अप नेक्स्ट, जो आकर काफी टाइम हो चुका है, दैट इज गुल्लक भाई। गुल्लक विल ऑलवेज बी नंबर 1 इन माय लिस्ट व्हेन इट कम्स टू फैमिली ड्रामा। नथिंग बेटर देन दिस, एंड आई डोंट नो इफ एनीथिंग विल कम बेटर देन दिस। सीजन 5 पर आ गया है दोस्त, एंड दिस इज द ओनली वेब सीरीज इन इंडिया जो सक्सेसफुली सीजन 5 पर आकर भी

सुपर डुपर हिट है। 7 सीजन का ये एपिसोड्स है, सोनी लिव पर आया है, 7 एपिसोड्स का ये सीजन है सोनी लिव पर जो आया है। एंड लेट मी टेल यू यार, 7th एपिसोड इज सो हार्ट वार्मिंग यार। प्लीज जाकर गुल्लक देखो, नहीं देखा तो सीजन 1 से देखो, एंड आई एम श्योर यू विल कम एंड यू आर गोना थैंक मी फॉर दिस। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: देखिए, घर को घर दीवारें नहीं बनाती, लोग बनाते हैं, ये तो बखूबी जानते हैं हम। और घर में बहुत से लोगों का आना जाना रहता है ना, लेकिन इनमें से अपने कौन होते हैं? शायद इसी सवाल पर एक खूबसूरत सा जवाब गुलजार साहब देते हैं। एक शायरी नहीं है, बस मेरी डायरी से चंद लाइंस है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: वो कुछ ऐसी है, दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुक कर आएगा समझो वही अपना है। क्या खूबसूरत ख्याल है गुलजार साहब का, क्या बात है, और कितनी गहरी बात है ना ये। झुकना यहाँ सिर्फ दरवाजे से गुजरना नहीं, अपने अहंकार, अपनी ईगो, अपनी आना छोड़कर किसी रिश्ते में आना जो सिर्फ अपनी शर्तों पर चले वो मेहमान ही हो सकता है, लेकिन जो रिश्ते के लिए थोड़ा सा झुक जाए, समझ लीजिए वही आपका अपना है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, आपकी अपनी, ऑफ कोर्स, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है?
3: आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
4: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
2: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, It's Hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, It's Hot.
5: Our business is our business. None of your business.
6: Par didi, our entertainment is your entertainment.
7: Entertainment.
8: Qatar ka number one radio station.
9: 89.6
10: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: आप सवेरा जसलीन रॉयल बुर्रा की आवाज में ये गाना उड़ जा डेडिकेटेड टू मी एब्सोल्युटली. और हाँ, मैं खुद को ही कहना चाहूंगी, जा उड़ जा आफरीन, जी ले अपनी जिंदगी, आ गया है तेरा वीकेंड. क्या खुशी मिलती है यार मुझे. मतलब सुबह से मुझे दो फोन कॉल आ चुके हैं और वो फोन कॉल्स में मुझे दोनों लोगों ने कहा है कि भाई क्या बात है, आज आवाज़ एकदम चहक रही है, आफरीन बड़ी खुश लग रही है. ऑफकोर्स मैंने कहा वाई नॉट, भाई वीकेंड है और ये जो खुशी ना मैं अकेली यहाँ शेयर नहीं करती हूँ, मेरे साथ में मुझे सुनने वाले मिर्ची मॉर्निंग्स पर वो लोग भी शेयर करते हैं मेरे साथ. और काफ़ी सारे लोग यार कतर में है ना, वीकेंड का एक अपना अलग ही मजा रहता है. एंड आई थिंक सो दिस वीकेंड इज क्वाइट स्पेशल फॉर मेनी ऑफ देम बिकॉज बहुत से लोग आज ट्रैवल करने वाले हैं. और क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो आज कल परसों में, ये ध्यान में रखो भाई, रिक्वेस्ट की गई है कि थोड़ा सा एयरपोर्ट पर 3 से 4 घंटा जल्दी ही पहुंच जाए क्योंकि दिस इज द ट्रैवल सीजन. कतर अपना खाली हो रहा है, एवरीवन इज ट्रैवलिंग लाइक यू. तो बस अच्छे से स्मूथली सारा आप कुछ हो, सारा आपका सब जो ट्रैवल है, इमिग्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, सिक्योरिटी चेक एंड एवरीथिंग, सब कुछ अच्छे से हो जावे, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी पहुंच जाए. और क्या है, अपना कतर का एयरपोर्ट है ही वर्ल्ड फेमस, तो जाओ ज़रा आधा एक घंटा टहल लो, वहाँ पर भी शॉपिंग वॉपिंग कर लो, बड़ा मज़ा आता है मुझे ड्यूटी फ्री में शॉपिंग करके भी. सो विद दिस, चलो टाटा बाय बाय. मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ. मिलूंगी आपको फिर से अगले हफ्ते बहुत सारी बातें लेकर, बहुत सारी वर्ल्ड कप की अपडेट्स लेकर, क्योंकि यार तब तक है तो और भी आगे पहुंच गया रहेगा सिलसिला वर्ल्ड कप का, है ना. विद दिस, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय योर वीकेंड, टाटा बाय बाय, सायोनारा. माइक से दिल तक आफरीन लेती है अलविदा और आएगी अब आपको एंटरटेन करने के लिए अंशु कुछ ही देर में ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन.
2: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी.
1: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूं?
2: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
3: रक, रक,
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

0: अग्नि की खूबसूरत सी आवाज, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। इस वक्त ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, 90s की यादों को आपके साथ मिलकर एक बार फिर से ताजा कर लिया। लेकिन फिलहाल ये बता दूं, मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वैसे अगर आंखों से कहने की बात करें, उस जज्बात को समझने की बात करें, तो यार ये हुनर हर किसी में कहा।
2: मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You are listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का घोलते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड आज का दिन जो कि बहुत ही ज्यादा खास एंड स्पेशल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वीकेंड, उसकी शुरुआत भी आपके साथ करने के लिए मैं आ ही गई हूँ। देखिए यार, इस बार के वीकेंड को अगर हम देखने की कोशिश करें, सो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर हियर इन दोहा एट द मोमेंट, जिनकी फैमिलीज भी यहाँ पे कतर में है, यार आपके लिए वीकेंड बहुत खास, बहुत स्पेशल है, क्योंकि बच्चों के स्कूल के वेकेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर पूरा का पूरा परिवार जो है ना वेकेशन मोड इस वीकेंड से सेलिब्रेट करना, मनाना फाइनली शुरू कर ही देगा। लास्ट वीक की अगर बात करूं तो इंडियन स्कूल के हॉलीडे शुरू हुए, लेकिन इस वीकेंड से इंटरनेशनल स्कूल्स के भी हॉलीडे शुरू होने वाले हैं। यार हम जो है ना बड़े मस्त लोग हैं और इसके साथ ही बड़े व्यस्त भी हैं। हम सही मायने में अपने काम में बिजी रहें या ना रहें, लेकिन बेवजह खुद को बिजी रखना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। एंड आपको पता है आज की डेट में किसके में सबसे बड़ी कैपेसिटी है कि हमको हर वक्त बिजी रख सके, जरा सोचें। तो भैया वो वही डब्बा है जो अक्सर आपके हाथ में पाया जाता है, आपकी निगाहें पूरी तरह से उसमें चिपकी हुई होती हैं, आपकी उंगलियां दिन भर उसे बस स्क्रोल ही करती रहती है। बोल इतना ही कहना चाहूंगी यार, फाइनली वीकेंड जो है जिंदगी में आया है, अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा एंड बहुत अच्छा वक्त बिताएं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये चार बीते के डब्बे को ना अपने पास से हटाकर उनके साथ वक्त बिताएं। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कभी कभी महसूस ही नहीं होता कि टाइम गया तो कहां गया, पता ही नहीं चलता यार दिन कब शुरू होता है, खत्म कहां होता है। अगर उस टाइम को आप नोटिस करने की कोशिश करेंगे, कभी अपने सेलफोन में अपना स्क्रीन टाइम देखने की कोशिश करेंगे, तब समझ में आएगा कि मैक्सिमम टाइम गया तो कहां गया। मैं कहती हूँ उसका 1/4 वक्त भी अगर आप दिल से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ या खुद के साथ भी बिताते हैं ना भाई साहब, उससे खूबसूरत और बेहतरीन दिन दूसरा कोई और हो नहीं सकता। चलिए जी, इसी थॉट के साथ करते हैं मीठी मिर्ची की शुरुआत। अगर बात में है दम, तो एक यार थैंक यू मैसेज या हाय हेलो अंशु वाला मैसेज तो हो जाए। 5000-1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल यासिर देसाई की आवाज में गोल्ड फिल्म से ये एकदम सोने जैसा गाना आपके लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mechi. Escabana, poscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vieja la murga. Mechi, murga.
1: हेलो,
2: इज दैट वर्षा? वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारे एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारेगामा पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारेगामा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती
2: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारेगामा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हो, आप ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए, तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
5: कम है के?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: कामिल मोहम्मद फैज की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़, क्या खूबसूरत सा गाना। चलिए प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन वीकेंड के एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस की बात इस वक्त आपके साथ हो ही जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Ajayanshu with you. जिंदगी में मिठास एंड साथ ही स्पाइस का तड़का है एंड ये जगह ऐसी है जो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे वाले जरूर लेकर आएगी एंड यू गॉट टू बी देयर फॉर श्योर। वेल लेट मी टेल यू, वीकेंड में इस वक्त कतर में बहुत कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। सबसे पहली बात जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया लेकिन रीट्रेट कर दूं जस्ट इन केस इफ यू हैव फॉरगॉटन, अगर एक ऐसी जगह जहां पे आपको लगता है कि बच्चों का फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाला है, एक ऐसी जगह जहां पे आपको लगता है कि आपका भी प्रॉपर एंटरटेनमेंट होने वाला है एंड घर वाली खुश रहेगी, बच्चे खुश रहेंगे, लेकिन हाँ आपकी जेब जो है वो जरा ढीली होगी, ना टाइट नहीं, ढीली होगी। हर चीज जिंदगी में मुफ्त में मिलने लगी तो बात ही क्या है बाबू। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। दो मेजर इवेंट्स इस वक्त वहां पर होस्ट किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात किड्स टॉय फेस्टिवल, जो अपने पूरे जोश में, अपने पूरे फॉर्म में, इनफैक्ट बिगर एंड बेटर वे में हमारी जिंदगी में शामिल हो चुका है। यार एक बात कहूँ, हम जो है ना बड़े कमाल लोग हैं, जब किसी और देश घूमने जाते हैं तो इन सभी इवेंट्स को अटेंड करने के लिए, एक्सपीरियंसेस को विटनेस करने के लिए ना जाने कितने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कहते हैं ना अगर वही चीजें आपके पास खुद चलकर आ जाए तो आपको उसकी वैल्यू जो थोड़ी कम लगने लगती है। जाओ भाई विदेश जाओगे, टिकट के पैसे दोगे, वहां तक पहुंचने के पैसे दोगे, फास्ट ट्रैक टिकट का पैसा लोगे, इससे अच्छा यहीं पर जाके अटेंड कराओ, वाले पैसे जो है ना अपन मिल बैठ के डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। बच्चों को जहां वहां छोड़ जाएंगे वहां मोहतरमा को कहीं और लेके जाएगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दोहा शॉपिंग एंड ट्रेड एग्जीबिशन व्हिच इज आल्सो बीइंग हेल्ड एट दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर एंड इट इज गोना रन ओनली अंटिल दिस सैटरडे। गो हैव सुपर फन, बहुत सारी शॉपिंग करें, बहुत सारा एंजॉयमेंट करें। वैसे किड्स टॉय फेस्टिवल तो पूरे महीने भर है लेकिन एग्जीबिशन जो है सिर्फ 4 तारीख तक ही है। जाइए मस्ती मजा करके आइए। मीनवाइल मैं ये सिलसिला अपनी जिंदगी में कंटिन्यू रखूं अरिजीत सिंह एंड सुनिधि चौहान की आवाज में। ब्रांड न्यू ट्रैक आपके रास्ते फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2, एंजॉय। एंड सुनो डील पता है, मेरे साथ कनेक्टेड हो तो मुझे बताना जरूरी है। अंशो तुम्हें सुन रहे हैं 5000 1896 5000 1896। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: वह लता मंगेशकर कुमार सानू की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म जब प्यार किसी से होता है। एंड सच कहूं यार, ये वही एरा है जब जेन्युइनली हमें किसी से प्यार होने लगा था ना 90s के दौर में। हाय सलमान खान से।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to me, Timothy, and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ। जहाँ पे सलमान इस गाने में, इस फिल्म में इतने खूबसूरत लगे थे, वहीं दूसरी तरफ नम्रता की आंखों को कोई भूले तो कैसे ही भूले भाई। वो कजरारी, वो कर्री सी आंखों ने ना सबके दिल में घर कर ही लिया था। हाउइंग सदार, आपके घर पे जो कुछ मौजूद है, एक काम करते हैं, उसके लिए भी कुछ खास हम इस वक्त ले ही लेते हैं। नहीं, मैं आपके घर पे जो जेवर है उन पे नजर नहीं डाली, मैं तो आपकी गाड़ी की बात कर रही। अगर आपको लगता है कि गाड़ियों से ज्यादा आपको गाड़ी के नंबर पे दिलचस्पी है, उस पे इंटरेस्ट है, तो भाई ये बात जो है ना, अगली बस आपके लिए। कई बार हमारे साथ ना ऐसा होता है कि हम गाड़ी को देख के चौंकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसके नंबर को देख के चौंकते हैं। भाई साहब क्या नंबर है, देख के समझ में आ जाता है भाई साहब ये अपने किसी लोग की तो नहीं है, किसी और की है। वेल, अगर आपको लगता है कि आपको भी ऐसा कोई स्पेशल नंबर चाहिए, तो उस वक्त जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने अनाउंस किया है कि संडे सुबह ठीक 8 बजे यानी कि 5 जुलाई को आप सून ऐप या तो फिर आप मेट्राश में भी जा सकते हैं। वहां पर आप देख पाएंगे कि नए बैच जो है स्पेशल नंबर्स के वो रिलीज किए जा रहे हैं। एंड सबसे खास बात यह है, अगर आपको भी लगता है कि इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आप 101% कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना होगा एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी होगी। एंड अगर एक ही नंबर के लिए मल्टीपल लोग इंटरेस्टेड हुए, तो उसके बाद 24 आवर इंटरनल ऑक्शन होगी एंड नंबर उसी को मिलेगा जिसने सबसे ज्यादा बिड किया हुआ है। बढ़िया है, मतलब अपनी पॉकेट जो है वो ढीली करने का वक्त आ ही चला है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही एप्लीकेंट हुआ, तो नंबर सीधा लिस्ट जो है आपको मिल ही जाएगा। तो गाड़ी का नंबर बदलने की बारी आ चुकी है, अच्छा वाला नंबर लाने की बारी आ चुकी है। हर किसी को ना नंबर जरूर याद होते हैं। जैसे जो कार लवर्स हैं, उनको गाड़ी के नंबर पे दिलचस्पी होती है, आपको आपकी गर्लफ्रेंड के नंबर पे दिलचस्पी रही होगी, लेकिन आपके माँ बाप को आपके मार्कशीट के नंबर के अलावा किसी नंबर में कोई कभी दिलचस्पी ना रही होगी। हमारी बात रही तो आज की डेट पे हम तो पैसे के नंबर गिनते हैं, 2 पैसा ऊपर 2 पैसा नीचे। कविता सेठ की आवाज, नीरज श्रीधर का साथ, बंधु, ये अगला गाना आपके लिए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

हम सफर, हाय मतलब कहते हैं ना, जिंदगी में सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन साथ किसी का हो तो आपका आपके साथी के साथ हो। मिर्ची अंशु Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास एंड स्पाइस का तड़का, ये जो है ना बरकरार रहना चाहिए एंड सबसे खूबसूरत आपका जो रिश्ता है आपका आपके साथी के साथ हमेशा होना चाहिए। चलिए जी, इस वक्त आपकी जिंदगी में एक बड़ा सा अपडेट लेकर मैं आ ही जाऊँ। एक बात बताएं, क्या आप भी मेरी तरह उन लोगों से परेशान कभी कभी होते हैं जो व्हाट्सएप का रिप्लाई 2 से 3 मिनट पे ना देने पर इंस्टेंटली फोन के तांते लगा देते हैं? भाई साहब, नंबर क्या दे दिया, गलती हो गई क्या? अगर ऐसा कोई ख्याल जहन में आता है तो अब आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है ना आसान होने वाली हैं। यार, एक जमाना था जब किसी से दोस्ती करनी हो तो पूछा जाता था तुम्हारा नंबर क्या है। आज का एक टाइम भी वही है, किसी को दिन भर फॉरवर्डेड मैसेजेस भेजने हो तो भी यही पूछा जाता है तुम्हारा नंबर क्या है। व्हाट्सएप के बिना किसी का काम चले तो कैसे चले? लेकिन ये लाइन अब धीरे धीरे हिस्ट्री बनने वाली है। वेल, व्हाट्सएप ने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर रोल आउट किया है, दैट इज यूजर नेम्स। ठीक सुना आपने, बहुत जल्द आप व्हाट्सएप पर अपने फोन नंबर शेयर किए बिना अब किसी और से इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब सोचिए, किसी नेटवर्किंग इवेंट में आप मिले, किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी बिजनेस मीटिंग में या किसी नए ग्रुप में, हर बार पर्सनल मोबाइल नंबर देना ये तो जरूरी नहीं। इसीलिए व्हाट्सएप ने सोचा कि क्यों ना दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स की तरह एक यूनिक व्हाट्सएप यूजर नेम बनाया जाए एंड लोग जो हैं अब सीधा अपना यूनिक व्हाट्सएप यूजर नेम शेयर करें एंड चैट जो है प्राइवेसी के साथ और कन्वीनियंस के साथ कैरी ऑन कर सके। मतलब आपकी एक आईडी रहेगी, आपका एक यूजर नेम रहेगा पर्टिकुलर विच इज कम्प्लीटली ओन्ड बाई यू, वो आप शेयर कर व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन शुरू कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपना सेलफोन नंबर देने की जरूरत नहीं है। जहां पे दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसे सराहा है, वहीं इंडिया ने इस वक्त इसे टेम्पररीली अप्लाई होने से मेटा से रिक्वेस्ट किया है कि इसे रोके, एक बार पूरी तरह से ये चेक कर लिया जाए कि कोई स्पूफिंग ना हो, कोई आपका डुप्लीकेशन करने की कोशिश ना करे, कोई प्राइवेसी का रिस्क ना हो। जब तक ये फीचर कंफर्म नहीं हो जाता तब तक कहा है कि इसे जरा रोक दें। आपकी क्या राय, क्या आपको लगता है दिस यूजर नेम कॉन्सेप्ट इज बेटर जहां पे आपको फोन नंबर शेयर नहीं करना है? क्या कतर में ये चलेगा? क्या लगता है आपको? 5000 1896 5000 1896, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल, अरिजीत सिंह निकिता गांधी की आवाज में चुकी आपको और हमारा रابطہ है तो ये गाना भी सुना दिया जाए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मोहपात्रा की खूबसूरत सी आवाज़, फिल्म का नाम फुकरेन, वाला लवली ट्रैक इट इज़। ये प्यारा सा गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन सारा का सारा अंबर एक ही बात कह रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास है, साथ ही स्पाइस का तड़का है, तो भाई साहब जिंदगी कमाल ना हो तो फिर क्या ही हो। एंड इसके साथ ही आज पूरा आसमान मुझे एक ही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ में अच्छा वाला दिन बहुत अच्छी तरह से आ गया है, यानी कि वीकेंड का दिन जो है हमारी जिंदगी में आ चुका है। यार थर्सडे आए ना, ऑर्गेनिकली बाय डिफॉल्ट मेरी लाइफ में तो वीकेंड मोड आ ही जाता है, लेकिन जैसे ही वीकेंड आए एक सवाल जो 101% आपके और हमारे जहन में आता है वो बस यही कि क्या करें क्या ना करें, ये ऐसी मुश्किल है। यार वर्ल्ड कप का क्रेज कोने कोने में उस वक्त चल रहा है। साल 2022 वो आखिरी एडिशन ही था जब फीफा का इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस हमने कतर में लाइव अपनी आंखों के सामने महसूस किया। एंड उसके बाद से ये बात तो तय हो गई है कि क्रिकेट के अलावा हम जो है ना अगर किसी और स्पोर्ट के 101% फैन बन चुके हैं तो वो है फुटबॉल। एंड इस बार का मैजिक ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट है, मतलब क्या हो रहा है, कब हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कहीं कोई सोच भी नहीं सकता है, समझ ही नहीं सकता। टीम कितनी बड़ी है इस बात में कोई दम नहीं रह गया। जिस दिन परफॉर्मेंस के समय जिसने गजब खेल लिया, जिसका सिक्का चल गया, समझो भाई जीत जो है ना बस उन्हीं की है। एंड अगर आपको लगता है कि उस फुटबॉल मैजिक को आपको इस वीकेंड एंटरटेन करना है, एंजॉय करना है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाओ यार अल महा आइलैंड जाकर आप 101% एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे विजिट कतर का फैन जोन है जहाँ पे ना ही सिर्फ मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है लेकिन इसके अलावा बहुत सारी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज भी हैं जो आपको काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है। जाइए शाम 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अल महा आइलैंड में जाकर फुटबॉल की फीवर को, इस मैच को अपनी जिंदगी में फिर से शामिल करके आइए। एंड वैसे अगर कल के मैच की बात करूं, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्साइटिंग एंड आई एम सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन पोर्चुगल एंड क्रोएशिया। दोनों ही ऐसी टीम जिसको अंडरएस्टिमेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, जहाँ पे एक तरफ रोनाल्डो है वहीं दूसरी तरफ लुका है। अब लुका वर्सेस रोनाल्डो को हम ना देखें तो फिर क्या ही देखें। आए जितने भी रोनाल्डो फैंस इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड है, एक बार डिजिटल वाला वो सू ना भेजाना तो मैं सज्जमा जबाऊंगी। तुम रोनाल्डो फैन तो ना, 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम Mirchi1KataryaMirchiAnshu। मीनवाइल मोहित चौहान की आवाज़ एंड अभी कुछ दिनों से कुछ तो लग रहा है, बताऊँ क्या, एंजॉय।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करने?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
5: 89.6
3: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मतलब रितु सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़. मतलब ये गाना जो है ना अपने आप में किसी शायरी से कम नहीं यार. व्हाट अ लवली ट्रैक.
1: मिर्ची अंशु.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aryanshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. लेकिन इसके साथ ही कोई तो आपका नॉलेज है, कोई तो आपका ज्ञान है जो इस वक्त मैं टेस्ट भी करने वाली हूँ. वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड वाला सरप्राइज टेस्ट. एब्सोल्युटली, यू हर्ड दैट राइट. यार हम जो है ना फिल्मों से बहुत दिल से कनेक्टेड हैं. मतलब मैं तो ज़रूर हूँ यार. मतलब चाहे इंग्लिश कुछ अच्छी फिल्में हो जो मैं देखती हूँ, हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ की मैं बात करूँ, ना ही सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया है लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है ना जो लाइफ में आपको बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा सा मैसेज बस दे ही जाती है. चलिए जी, उनके बारे में बाद में बात होगी. लेकिन एक ऐसी फिल्म जो लिटरली आज के जनरेशन आज के एरा में भी उतनी ही पसंद की जाती है जितनी कि कुछ साल पहले, उसकी कोई तो आइकॉनिक सी कॉन्वर्सेशन है जो उस वक्त मैं आपके बीच पेश करूंगी. आप सुनेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड अगर ये मूवी आपकी भी उतनी ही फेवरेट है जितनी कि मेरी एंड ये एक्ट्रेस आपको भी उतने पसंद है जितनी कि मुझे, तो फटाफट से आपको करेक्ट आंसर भेज देना है. लेकिन कहां, एज यूजल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000 1896 पर विल गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. एंड आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब जब आपका जवाब आता है तो मुझे खुशी जो है ना वो अपरंपार होती है. सो हियर वी गो.
2: तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो. आई थिंक आई एम क्रेजी अबाउट यू.
3: Yes! Yes! Hey! Yes! Yes! Yes!
2: तुमने मेरी दुनिया बदल दी है.
3: Thank you.
2: मुझसे शादी कब कर रहे हो? मुझसे शादी कब कर रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: मंगलसूत्र ढूंढ रहा हूँ. सच कह रहा हूँ, अगर मेरे पास अभी एक मंगलसूत्र और शहनाई की कैसेट होती ना तो मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी कर लेता.
0: हाय हाय हाय हाय, ये कॉन्वर्सेशन, ये दो लोग, बैकग्राउंड का ये म्यूजिक, भाई इससे खूबसूरत एहसास दूसरा हो तो फिर क्या ही हो. फटाफट से बताओ कि ये है तो है कौन सी फिल्म. 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. मीनवाइल एक बहुत प्यारा सा गाना मैं आप तक पहुंचाती हूँ. एंजॉय. बद्दी गाना अंशु.

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब।

उसकी किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: मललका याग्निक की उदित नारायण की खूबसूरत सी आवाज एंड दिस लवली ट्रैक फ्रॉम द फिल्म मैं ऐसा ही हूँ, जिसमें आपको अगर कोई नजर आए तो मैं प्रीति जिंटा एंड साथ ऋतिक रोशन। चलिए, ये आइकॉनिक डुओ का ये आइकॉनिक सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन किसी बेहद आइकॉनिक फिल्म की बात हो जाए। Welcome back, you're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you। जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड आपसे कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश की थी एक कॉन्वर्सेशन, जिसे जल्दी से फिर से सुनाते हैं एंड देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है। ये है तो है किस फिल्म से?
1: तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। I think I'm crazy about you.
2: Yes! Yes!
0: Radio, so ये iconic सा कुछ तो moment था जिसे आपने और हमने जिया। देखते हैं लोग बाग क्या कहते हैं कि है तो है किस फिल्म से।
3: Hello, my name is Vinesh Kumar.

0: muri renovate edilme diye Mirza and Armad var.
1: Hi Anshu, Bishwadeep this side, the voices of Diya Mirza. Thank you.
2: Well, absolutely, आप दोनों ने जो कहा ये पूरी तरह से सही। अगर मैं उस फिल्म की बात करूं तो फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में, साल 2001 की एक ऐसी कल्ट क्लासिक मूवी जिसे डायरेक्ट किया गौतम वासुदेव मेनन ने, प्रोड्यूस किया वाशु भगनानी ने। इस फिल्म में अगर लीड कास्ट में अगर हमें कोई नजर आए तो वो है आर माधवन, दिया मिर्जा एंड साथ ही सैफ अली खान। लेकिन यार आज जो है ना, मैं फिल्म से ज्यादा के एक्टर्स की बात करना चाहूंगी। आर माधवन जो कि ना ही सिर्फ एक ब्रिलियंट एक्टर माने जाते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है। भाई एक्टिंग में रोमांस किया, रंग दे बसंती में इंटेंसिटी दिखाई, थ्री इडियट्स में सिंप्लिसिटी, रॉकेटरी में साइंटिस्ट नाम्बी नारायणन की कहानी सिर्फ एक्ट के जरिए पेश नहीं की बल्कि उस फिल्म को लिखा भी, डायरेक्ट भी किया एंड साथ ही प्रोड्यूस भी किया। हर रोल में वो खुद से ज्यादा, स्टार से ज्यादा अपने कास्ट के लिए काम किए। एंड वही अगर दिया मिर्जा की बात करें तो उनकी खूबसूरती तो हर किसी ने देखी है यार, लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ एक्टर या फॉर्मर ब्यूटी क्वीन के तौर पे नहीं। वो एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करें, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, इन सब पहलुओं पर सालों से काम कर रही हैं। और इस फिल्म ने हमें बॉलीवुड के दो सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं दिए बल्कि दो ऐसे लोगों से हमें रूबरू कराया जो एक्टर होने के साथ साथ सही मायने में काफ़ी अच्छे इंसान और लोग भी। चलिए जी, यही उम्मीद है कि इंसानियत हर किसी के दिल में बनी रहे, ऊपर वाला हम सबकी दुआएं कबूल करते रहे। इसी के साथ इस फिल्म का अगला गाना मैं आपको सुनाऊंगी अब से कुछ देर में, लेकिन अभी फिलहाल कुछ पल इबादत के नाम।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोर्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री।
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन। ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट। ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070 7687।

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज यार. मतलब ऐसे गाने जब जब सुनाई देते हैं ना, कलेजे को ऐसी ठंडक मिलती है कि लगता है गर्मी में ठंडी का एहसास जो है, कम से कम राहत का एहसास जो है, ये तो मिल ही गया. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. भाई साहब क्या खतरनाक गर्मी एंड गजब की गर्मी. सच कह रही हूँ, आज जब मैं सुबह ऑफिस आ रही थी ना, तो अनफॉर्चुनेटली मेरी गाड़ी का एसी जो है वो काम नहीं कर रहा था. एंड उस 20 मिनट के सफर में मुझे समझ में आया कि लाइफ की बेसिक चीज़ें जिन्हें हम यूं ही लाइटली ले लेते हैं, कभी कभी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं. भाई घर में एसी हो पाना, एसी का सही तरह से चल पाना, हमारे पास पीने के लिए अच्छा साफ पानी हो पाना, अच्छा खाना हो पाना, रहने के लिए घर छत, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं जो शायद बेसिक नहीं है, लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एंड खुशनसीबी वाली नेसेसिटीज हैं. मैं इनफैक्ट ये कहना चाहूंगी. तो बस आज के इस छोटे से इंसिडेंट ने मुझे एक बात तो जरूर सिखाई कि जिंदगी ने जो जो नेमतें दी है ना, उन्हें दिल से कबूल करो एंड ऊपर वाले के सामने शिकायतों के बदले हर दिन शुक्रिया अदा पेश करो. करके देखो, बरकत होगी और ज्यादा होगी. बाकी फिर मेरी इस राय से जो आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा उसकी पार्टी वार्टी देख लेंगे. लेकिन देखें, आज सूरज चाचू क्या ही पार्टी करने में लगे.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
0: वेदर अपडेट. हाँ जी चाचू जी, पता है आप तपे हैं, सॉलिड तपे हुए हैं. अगर आज के ही आपके तापमान को हम देखने की कोशिश करें, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 47. इट इज एक्सट्रीमली हॉट. प्लीज टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. मिनिमम टेम्परेचर की मैं बात करूँ, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 35. ठंडा पानी, साफ पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स पीते रहें. बाकी कलेजे दिमाग की ठंडक के लिए मेरे साथ टिक के बने रहो यार. जिंदगी खुशनुमाई रही, कनेक्टेड हो. मैसेज मैसेज वेटिंग 5000 1896. मीनवाइल वेदर अपडेट इज ब्रॉट.

एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज यार. मतलब अदनान साहब के कुछ गानों की बात करूं जो मुझे बेहद पसंद है, उनमें से ये गाना शायद इस चार्ट को, इस लिस्ट को टॉप 101% करे. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aajya Anshu with you. आपकी जिंदगी में मिठास एंड स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं तो आ चुकी हूँ, लेकिन एक ऐसी जगह आपको भेजने की तैयारी भी कर दूँ जहाँ पे ढेर सारी मिठाइयाँ भी मिलेंगी, बहुत सारे स्पाइसेस भी मिलेंगे एंड इसके अलावा आपके घर को पूरी तरह से रिवाइज करने के लिए, घर को रीफ्रेम करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए ना आपको सब कुछ मिल जाएंगे. भाई एक छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाए, इंसान को चाहिए तो और क्या ही चाहिए. नहीं, ये महिलाओं की अलमारी है, बस यही समझ लीजिए, जहाँ चाय पत्ती के डब्बे के अंदर से भी ना कुछ ना कुछ जरूर निकल आता है. वेल, मैं बात कर रही हूँ कटारा कल्चरल विलेज में इस वक्त चल रहे शॉपिंग फेयर एंड एग्जीबिशन की, जो कि चलेगा 3rd of July तक. अगर आप अभी तक विजिट नहीं किए, लग रहा है कि कोई तो अच्छी इंडोर एक्टिविटी आपको एंजॉय करनी है, तो 101% आपको यहाँ पर पहुँचना है. देखिए सबसे खास बात, जहाँ पे शॉपिंग का अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ भाई फुल्ली एसी एयर कंडीशन इलाके में आपको घूमने का मौका मिल जाए, इससे आपको और क्या ही चाहिए. एंड मुझे ना वैसे भी ये जो फैमिली समर शॉपिंग एग्जीबिशन होते हैं या जो बाजार होते हैं ना, काफ़ी अच्छे लगते हैं. कहीं ना कहीं बचपन के दिनों में मुझे ये मेले की याद दिलाते हैं. आई स्टिल रिमेंबर द टाइम कैसे मैं अपने दादाजी का हाथ पकड़ कर वो शहर में लगने वाले फेयर यानी कि मेले में जाया करती थी. लेकिन वो मेला जो है ना सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं होता था, खिलौनों की दुकानें होती थी, खाने पीने का बहुत सारा सामान होता था, लेकिन उसमें ना बहुत सारे झूले भी होते थे एंड उसमें बहुत सारे ऐसे स्पेशल एक्ट्स होते थे. वो मौत का कुआं जिसे नीचे से ऊपर गाड़ी घुमा घुमा के लोग ऊपर आते थे, वो दो चेहरे वाली नागिन नहीं, वो हर घर में पाई जाती है, लेकिन जस्ट सेइंग. क्या दिन थे यार. क्या आप बचपन के दिनों में ऐसे किसी मेले में गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, या आपकी सिटी में ऐसा कुछ होस्ट हुआ करता था, बताएं यार. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल सुनिधि चौहान की आवाज में अगला बहुत ही प्यारा सा गाना जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लगा?
3: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा
3: यार, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद, इरशाद।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: विशाल शेखर की पावर पैक आवाज बी प्राक का साथ एंड व्हाट अ टेरिफिक ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म फाइटर एंड आपकी हीर जो है ये बिल्कुल आसमानी ही है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. And आपकी आसमानी हीर आज आसमान में उड़ते हुए रेट्स की खबर लेकर आप तक पहुंच ही चुकी है. Absolutely. एक्सचेंज रेट्स इतने कमाल हैं कि आज आपके पांव जो है वो जमीन पे नहीं बिल्कुल आसमान पे ही टकने वाले हैं. जरा देखें आई पे मनी में एक्सचेंज रेट्स का आज क्या ही बोलबाला है. राइट ही हो, सबसे पहले मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई. सैलरी वाले दिन आपकी जिंदगी में अगर आ ही चुके हैं तो देखते हैं आज का पैसा बोलता है तो क्या ही बोलता है. अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.03. क्या बात है जी, बढ़ोतरी हुई है, जरूर बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है. साथ ही अगर नेपाली रुपीज को देखने की कोशिश करें सो इट इज 41.69. आपको भी मुबारकबाद, आपके पैसे में इंक्रीमेंट हुआ है, 100% हुआ है. बांग्लादेशी टाका की बात करें सो इट इज 33.97. साथ ही लंकन रुपीज आज डंका बजाते हुए पहुंच चुके हैं 92.05 पर एंड साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.88. घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए एक ही काम करना है, टिक के बने रहना है, सुनते रहना है कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय. बंदी का नाम

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

अरमान मलिक कमाल मलिक की पावर पैक आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज. ये खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन ये खास बात भी इस वक्त आप तक पहुंचा दी जाए. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ एंड साथ ही आपके वीकेंड के प्लान्स को और भी दुरुस्त एंड तंदुरुस्त करने की कोशिश भी पूरी तरह से कर ही रही हूँ. Well, इस वक्त अगर आप कतर को देखने की कोशिश करेंगे, घूमने फिरने की जगह की बात करें, तो एक बात आपको और हमको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इतने खूबसूरत डिजाइनर मॉल्स हमारे लिए इसीलिए बनाए गए हैं कि भैया गर्मी के दिनों में अगर दिल करेगी कुछ अच्छा ही कर लिया जाए तो बस यहाँ पे पहुंच कर हमारा ये काम जो है वो पूरा हो जाए. देखिए यार, अगर शॉपिंग की बात करें तो शॉपिंग जो है ना महिलाओं के लिए किसी थेरेपी से कम नहीं है. अगर तुम्हें लगे कि तुमने किसी का दिल दुखाया है एंड वो इंसान महिला है तो कुछ करो ना करो, शॉपिंग का कोई अच्छा सा वाउचर गिफ्ट कर दो या तो तुम्हारी घर वाली तो उसे शॉपिंग के लिए ले चलो. देखो तुम्हारे सारे गुनाह जो है ये किस तरह से माफ होते हैं. लेकिन इस वक्त इनके अलावा बच्चों के लिए अगर मैं किड्स टॉय फेस्टिवल की बात करूं तो उसके बहुत सारे एक्टिवेशंस, कतर टॉय फेस्टिवल के एक्टिवेशंस इस वक्त कतर के मॉल्स में भी हो रहे हैं. तो बच्चों के लिए भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एंगेजमेंट का बहुत ही बड़ा सा जरिया है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, वीकेंड आ गया, जाओ मॉल वॉल घूम फिर के आओ, अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स में खाना भी खा के आना, कुछ अच्छी रेसिपी मिले तो बताना जरूर, अगली बार तुम्हें हम ज्वाइन करेंगे. नहीं, अकेले नहीं जाएंगे, बिल तो आप ही का फड़वाएं. अरिजीत सिंह की आवाज़, निकिता गांधी का साथ, एंड ये अगला गाना आपके लिए, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi, it's hot.
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता है तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची हिट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची हिट्स हॉट।
3: मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

प्यारा सा गाना यार। फ्रॉम द फिल्म ए दिल है मुश्किल, प्रीतम की कॉम्पोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के शब्द। मतलब जब जब ये तीन एक साथ आते हैं ना तो मैजिक क्रिएट होगा, ये बात तो लाजमी। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड पता है क्या, आज ना मुझे एक बात महसूस हुई कि हम लाइफ में ना अक्सर खुशियों को बहुत बड़े बड़े पैमानों में तोलते हैं कि खुशी के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, इसका साथ चाहिए। भाई खुशियाँ जो है ना छोटी बातों में भी ढूंढी जा सकती है, उन्हें महसूस करने की देरी है। कभी सोचा है कि वो अचानक से तुम्हारे चेहरे में स्माइल आती है कि जब तुमने रेडियो ऑन किया, ऐसी कोई बात तुमने सुनी जो तुम्हारे दिल को सुकून दे जाए, या अचानक से तुम्हारा कोई फेवरेट ही गाना ही आ जाए यार, घर पे बिना कहे बस वो सब्जी बन जाए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑफिस में तुम्हारा काम जो है किसी और कलीग ने चुपचाप कर दिया, नहीं कम होता है लेकिन जब होता है खुशी मिलती है ना, या वर्क का लोड है वही ज़रा कम हो जाए, किसी पुराने दोस्त का फोन आ जाए जिससे अरसों बात नहीं हुई लेकिन बचपन के दिन जो है ना फ्यूचर के सपने उसके साथ मिलकर देखे थे, खुशी होती है, बहुत होती है। एंड यही जो बातें हैं ना जिंदगी को सही मायने में जिंदगी बनाती हैं। तो भाई आज जाने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगी, माना सपने बड़े देखने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए ज़िंदगी में बहुत मेहनत भी करनी है, लेकिन इस सफ़र में, इस जर्नी में अगर जो रास्ते में हमें मिले ना उन खुशियों को भी हमने अपनी ज़िंदगी में ना अपनाई तो फिर क्या ही किया। छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में शामिल करें और दिल से हंसें, दिल से खुश रहें। और ये बात अगर मेरी अच्छी लगी तो मुझे थैंक यू बोलें। 5000 1896 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। अभी के लिए लूँ आप सभी से अलविदा, मुलाकात होगी सैटरडे को विद द बेस्ट ऑफ द वीक एंड उसके बाद मैं मिलूंगी आपको संडे को और भी खूबसूरत अच्छी बातों के साथ। मसलाम हबीबी, एंजॉय।

0: घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में है चाय की थड़ी, और वो जो चाय की थड़ी है ना उसे मैं कह रही होती हूँ कि इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। डोंट यू थिंक कि 90s के गानों से लाइफ कितनी मेलोडियस हो जाती है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. Aapki 90s ki yaadon ka pitara. And now you tune in with me on Mirchi. And with time I've realized ki ye jo antakshari khel khel kar hum bade hue hain na, इसका असर ये हुआ है हम पर कि हम लाइफ को ही ना म्यूजिकल बनाते रहे हैं। बिकॉज ऑफ अंताक्षरी हमारे गानों की नॉलेज स्ट्रांग हुई, और ऐसी स्ट्रांग हुई कि हम अपनी गानों की इस नॉलेज को हर कहीं इस्तेमाल करते हैं, हर सिचुएशन में, हर मौसम पर। हमारी हाजिर जवाबी भी नवाबी है, कॉज ये शब्दों के साथ नहीं संगीत के साथ निकलती है बॉस। आप बताओ आपके दिमाग में अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके तहत कौन सा गाना बज रहा है? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। और अभी के लिए मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा। आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. La vizba la burka. Milci, burka.
1: हेलो
2: हेलो भाई राज, ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में, मेरी मेहनत की तूने ऐसी
1: काटी ऊपर से, तो फोन करके आ रहा है कि साले 17 रुपए।
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: एड्रेस दे दे अपना, वो कर देना, कॉरियर कर दूंगा।
2: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची में आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
0: उत्तर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: समीरा रेड्डी को वैसे हमने जो पहली बार देखा शायद वो और आहिस्ता पंकज उदास साहब का जो एल्बम था उसमें देखा होगा, राइट? और कितनी प्रिटी लग रही थी यार उसमें। और जब यही बंदी उठकर मूवीज में आ गई ना, तो मैं तो और बड़ी फैन हो गई यार इस बंदी की।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। समीरा रेड्डी की डेब्यू फिल्म विच वॉज मैंने दिल तुझको दिया। ये फिल्म हालांकि हिट नहीं हुई थी, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई थी बिकॉज काफी कलरफुल फिल्म थी, नहीं? एंड वैसे बाय द वे, ज्यादा लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन ये वो फिल्म है जिसे सुहेल खान ने डायरेक्ट भी किया है, प्रोड्यूस भी किया है, एंड ऑफ कोर्स ये तो सभी को पता है कि उन्होंने इस फिल्म में एक्ट किया है बिकॉज दिस वॉज हिज एक्टिंग डेब्यू। और इसी के साथ वो बॉलीवुड में सबसे यंगेस्ट सेलिब्रिटी बन गए टू टेक ऑन अ ट्रिपल रोल इन अ मेजर फिल्म एट वन टाइम। बट डिस्पाइट बीइंग अ कॉन्फिडेंट प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर, सोहेल अपनी एक्टिंग स्किल्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे और वो एक टेक को मल्टीपल टाइम्स दिया करते थे। बल्कि क्रू मेंबर्स का तो ये भी कहना था कि वो अपनी परफॉर्मेंसेस को ना बड़ी इंटेंसिटी के साथ रिव्यू किया करते थे आफ्टर द शूट। एंड देयर वाज दिस बाइक वाला सीन इन द मूवी, इफ यू रिमेंबर, यू नो, उस सीन के अंदर जो मोटरबाइक स्टंट था वो सोहेल ने खुद किया था, लेकिन बाल बाल बचे थे उस स्टंट को करते हुए बिकॉज उनको इंजरी होने ही वाली थी। और वो ये जो स्टंट था वो बॉडी डबल के बिना कर रहे थे, तो जो शूट था उसको पूरे एक दिन के लिए रोक दिया गया बिकॉज ये जानना जरूरी था कि इज सोहेल डूइंग फाइन और नॉट। और जब वहां से हरी झंडी आ गई कि हाँ भैया एक दिन का रेस्ट ले लिया, आई एम टोटली फाइन, वी कैन मूव फॉरवर्ड, तब जाके शूट जो है वो वापस से शुरू हुआ है। वैसे आपको एक बात बताऊं, इस फिल्म में ना सिर्फ सुहेल खान ने एज एन एक्टर डेब्यू किया है बल्कि उनके बड़े बेटे निर्वाण खान ने भी डेब्यू किया है। बताऊंगी कुछ ही देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
7: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
8: दोस्ती का गुस्सा ले मैडम। नो सॉरी नो थैंक यू।
9: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू। हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
10: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सुहेल खान की एक्टिंग डेब्यू फिल्म मैंने दिल तुझको दिया सिर्फ सुहेल खान की एक्टिंग डेब्यू ही नहीं थी, उनके बड़े बेटे निर्वाण की भी एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, इस फिल्म के अंदर सुहेल खान और जो उनकी पूरी गैंग है वो सब मिलकर एक बड़ा ही फंकी सा गाना जो है उस पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। दैट गाना इज शा ना ना ना।

गाना, क्या गाना था, ओहो हो। खैर गाने पे नहीं जाते, म्यूजिक पे नहीं जाते, इस गाने की पिक्चराइजेशन पे जाते हैं। इस गाने में अगर आपको याद होगा तो देयर वाज दिस वन सीन जहां पर सुहेल खान एक लेडी के पास जाते हैं और उस लेडी का प्यारा सा बच्चा होता है कुछ ही महीनों का, उस बेबी को गोदी में उठाते हैं और समीरा रेड्डी को लुक दे रहे होते हैं। ऑन स्क्रीन तो वैसे वो समीरा रेड्डी को लुक दे रहे थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन ही माइट बी लुकिंग एट द वुमन, बिकॉज दैट वुमन वॉज हिज एक्स वाइफ सीमा, और वो जो बच्चा था दैट वॉज हिज एल्डर सन निर्वाण खान। And just for the sake of some lucky charm for his film, he had his family come on screen as well. यही नहीं, सुहेल खान ने तो अपने कॉलेज के जो गैंग मेंबर्स थे उन्हें भी इस फिल्म में कास्ट किया, बिकॉज वो चाहते थे कि ये जो कॉलेज कैमराडरी वाली जो वाइब है ना वो बनी रहे और वो ना दोस्तों के साथ ही आएगी। तो उन्होंने काफी सारे अपने दोस्तों को भी उठाया ताकि वो अपनी रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में आए और उनकी फिल्म कर जाए। वैसे ये फिल्म हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मूवी हो सकती है, लेकिन सुहेल खान जिनकी एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी उनके लिए दिस मूवी सीम्स टू बी एन इमोशनल। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक मूवी के पीछे वैसे ही इमोशंस होते हैं जो खाना बनाने के पीछे होते हैं, बिकॉज़ व्हेन समवन कुक्स ना तो पूरे दिल से, मेहनत से, लगन से, चाह से और आस से खाना बना रहा होता है इंसान कि बस सबको पसंद आ जाए। अगर वो डिश अच्छी नहीं होती है तो लोग उसमें बुराई करने में जरा पीछे नहीं हटते हैं, और जिस बंदे ने इतनी एनर्जी दी है, इतना टाइम दिया है अपना, उस बंदे को डेफिनेटली बुरा तो लगेगा ही। सेम इज विद फिल्म्स, कि जब कोई फिल्म बन रही होती है ना तो मेहनत तो बॉस उतनी ही जाती है उस फिल्म को बनाने में जितनी की एक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर में गई होगी। उतनी ही मेहनत से, उतने ही जज्बे के साथ और उतनी ही गुड एनर्जीज पास करते हुए एक फिल्म की शूट हुई होती है, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है तो क्या होता है, अगर वो फिल्म कुछ खास अच्छी नहीं हुई ना तो ऑफकोर्स उसे ट्रोल किया जाता है, बुरा भला कहा जाता है। सेम इज विद द कुकिंग ऑल्सो, यार इतने दिल से बनाया, अच्छा नहीं बना तो बुरा भला कह दिया, दिल तो टूटेगा। जब भी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए तो यार उसके पीछे की जो इंटेंशंस हैं उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि फिल्म तो फ्लॉप हो गई, बकवास फिल्म है, जाना ही नहीं है। लेकिन हम ये भी तो सोचें कि किसी ने उसके ऊपर कितनी मेहनत करी है। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: Govinda, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
2: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
1: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
2: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
1: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
2: ये तीनों एक्टर्स ऐसे इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
1: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
4: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कहता है दिल, can you believe it? इस शो को 23 साल हो गए यार.
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. And this was such a beautiful show, यार. बड़ा क्यूट सा शो था. A story that revolved around a sweet little family जो एक sweet little जगह में रहती है, which was just beautiful. और करिश्मा जो कि इस कहानी की मेन कैरेक्टर थी, जिसको इनिशियली काम्या पंजाबी ने प्ले किया था एंड देन दी एक्ट्रेस पल्लवी कुलकर्णी उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया आगे जाकर, तो ये सीरियल इस फीमेल कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही घूमती है. लेकिन द फनी पार्ट इज कि सीरियल में राम कपूर और गौतमी कपूर ने एक साथ तो काम किया, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट काम नहीं किया. क्योंकि गौतमी कपूर प्लेज अमन वर्मा's वाइफ का रोल एंड राम कपूर की वाइफ का रोल निवेदिता भट्टाचार्य ने प्ले किया है. बिकॉज एट दिस टाइम राम और गौतमी की शादी हुई नहीं थी. और अगर इस शो के कॉन्सेप्ट की बात की जाए ना, तो यार ये वो शो था जिसने की किचन पॉलिटिक्स वाले जो सीरियल हुआ करते थे, जिनका की मार्केट में डोमिनेशन था, उनको साइड में कर दिया और लोगों को कुछ नयापन चाहिए था देखने के लिए. दैट इज एग्जैक्टली व्हेन दिस शो कहता है दिल वो लॉन्च के लिए तैयार हो गया था. और अभी के लिए हम भी लॉन्च के लिए तैयार हो जाते हैं. कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक जस्ट फॉर यू, सो एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा. आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirci.
1: Iskaba na puskaba na sakaba na. Murga, murga. La virgo la murga. Mirci, murga.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा?
2: हु इज दैट?
3: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारे गम पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद है।
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हैं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँ चाहिए तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बाजीगर में भले ही शाहरुख खान वॉज द विलन, लेकिन मेरे लिए तो वो हीरो ही थे।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड शाहरुख खान की ये पहली फिल्म थी जहां पर उन्होंने एंटी हीरो रोल प्ले किया था, लेकिन हुआ ये कि वो प्ले तो विलन का रोल कर रहे थे, बट स्टिल ही गॉट एस्टैब्लिश्ड एज अ सुपरस्टार आफ्टर दिस फिल्म। और आपको पता है, शाहरुख खान का रोल यानी कि विकी मल्होत्रा, अजय शर्मा के वो जो डबल रोल्स थे, वो पहले सलमान खान को ऑफर हुए थे, उसके बाद शाहरुख खान के पास गए। अब सलमान खान को ये रोल्स जब ऑफर हुए तो उन्होंने ना इसीलिए कर दिया क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर, और उनको ये थोड़ी ना पता था कि नेगेटिव होते हुए भी ये जो कैरेक्टर है ये दुनिया का दिल जीत लेगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी है इस फिल्म के अंदर, इस फिल्म में अनु मलिक के छोटे भाई डब्बू मलिक ने भी काम किया है। वो प्लेड द रोल ऑफ रवि शुक्ला, जो कि शिल्पा शेट्टी के कॉलेज फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे थे, जिसको की मारने के बाद सुसाइड नोट नहीं लिख दिया था शाहरुख खान के कैरेक्टर ने। एग्जैक्टली दैट पर्सन इज अनु मलिक के छोटे भाई, एंड ऑल्सो अमाल मलिक एंड अरमान मलिक के पापा भी। हाँ, यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चांटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चांटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चांटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची। It's hot.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कदर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: डुप्लीकेट फिल्म का सिर्फ नाम ही डुप्लीकेट नहीं है, इस फिल्म का एक गाना है जिसकी धुन भी डुप्लीकेट हुई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये जो नॉटी सा गाना है ना कि एक शरारत, अरे मैं क्या गाऊं यार, आप ही को सुना देती हूँ।

Well, this is exactly that song, जिसकी की धुन उठाई गई है एक इंग्लिश गाने से, which was sung by Laura Allen. इस गाने का नाम है Slip and Slide, and गाना कुछ यूं सुनाई देता है.

रिंग्स अ बेल, एग्जैक्टली माई पॉइंट बॉस। एंड वैसे आप भी मुझे बता सकते हो अगर 90s की या अर्ली 2000 की ऐसी कोई फिल्म या ऐसा कोई गाना जिसके बारे में आपको है मुझे बताना कि ये कहीं से कॉपीड है या इंस्पायर्ड है, तो डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। और अभी के लिए कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
2: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिन सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Our business is our business. None of your business.
5: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
6: Qatar का number one radio station.
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय अंजलि, मर्ची हेल्पलाइन बोल।
0: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
1: हाय, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
3: सारा जमाना सारा का दीवाना।
4: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

أشهد أن لا

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: यार ये QR कोड स्कैन करके मेन्यू देखना और ऑर्डर करना फील नहीं देता यार.
2: आज की बार 90s के साथ.
1: Hi, this is me, Zara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. And off lately, I can see कि cafes और restaurants में हर टेबल पर स्कैनर लगा हुआ होता है. स्कैन करो, मेन्यू देखो और ऑर्डर कर दो. लेकिन जैसे चावल हाथ से खाने में मजा आता है ना, वैसे ही ऑर्डर देने से पहले मेन्यू को फील करने में, उसके पन्ने पलट पलट कर उसमें गुम हो जाने में मजा आता है कि अरे यार, मुझे एपेटाइजर्स में चिकन विंग क्यों नहीं मिल रहा, तुझे तो मिल रहा है. एंड देन जवाब आता है कि तू गलत पेज पर चेक कर रही है पागल. एंड देन आल्सो आई एम इंटरेस्टेड कि किसी भी कैफे या रेस्टोरेंट ने मेन्यू को डिजाइन कितने अच्छे से किया हुआ है, क्योंकि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अब बताओ, ये बात फोन पर ऐप से मेन्यू देखने में कहाँ आती है यार. पहले किताबें और अब मेन्यू, दोनों ही फोन पर आ गए. और जिस तरह से डेटिंग लाइफ चल रही है ना, लगता है कि अब पक्के रिलेशनशिप्स भी फोन पर ऐसे ही स्कैन कर ही मिलेंगे. हकीकत में तो ना मिल पा रहे. Stay tuned with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है, तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है, ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्ती उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स हॉट।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
3: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Oxford Dictionary.
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज एक वर्ड का मीनिंग ढूंढते-ढूंढते तुम्हारी जो याद आई है ना यार, बस उस वर्ड का मीनिंग ढूंढना तो मैं बिल्कुल ही भूल गई, सिर्फ तुम्हारी यादों में खो गई। कैसे तुम हमारे लिए हर कभी मौजूद हुआ करती थी हमारे बैग में, मतलब बाकी सारी बुक्स एक तरफ और तुम ऐसे हमारे बैग में हुआ करती थी जैसे कि तुम कोर्स मटेरियल हो और तुम एक तरफ, इतना भार था तुम में। हालांकि तुम हमारे बैग में जो फिट होती थी वो तो छोटी सी थी और थोड़ी मोटी सी थी, और जो घर में मम्मा के पास रखी हुई थी वो तो दादाजी थे भाई। लेकिन मुझे ना तुम्हें उठा के बड़ा इम्पोर्टेंट सा फील हुआ करता था, एज इफ मैं कोई स्कॉलर हूँ। लेकिन जब तुम्हारे अंदर झांकती थी तो समझ में आता था, बेटा अभी सीखना तो बहुत बाकी है। इतने सारे लव्स थे तुम्हारे अंदर कि एक को ढूंढने जाते थे तीन का मतलब पूछना पड़ता था। और सबसे मुश्किल तो ये होता था कि हम किसी वर्ड को उठा के उसका मतलब तो ढूंढ ले, लेकिन प्रोनंसिएशन कैसे ढूंढे। वो प्रोनंसिएशन मुझे कभी समझ में आता था, कभी नहीं आता था। आज के गूगल की तरह नहीं कि आपने बस एक वर्ड का मतलब ढूंढा, उसका प्रोनंसिएशन जो है वो भी उसके साथ आ जाता है और गूगल ही बता देता है कि क्या प्रोनंसिएशन है। पता है तुम्हें, गूगल नामक आज एक चीज आ गई है हमारी दुनिया में जो तुम्हारा काम कर रही है। लेकिन हाँ, एक बात कह सकती हूँ, तुम्हारी जगह नहीं ले पा रही है, क्योंकि तुम्हारी तो बात ही कुछ और थी ना यार। जैसे ही मैम पूछा करती थी कि बताओ कैमोफ्लाज का मतलब क्या होता है, तो बस हम शान से तुम्हें डेस्क पर रखा करते थे और बड़ी गंभीरता से तुम्हारे पन्ने पलटा करते थे, मानो किसी गहरे सीक्रेट की खोज कर रहे हो। यार क्या दिन थे वो। अब तो ना तो कोई तुम्हें बैग में रखता है, ना ही किताबों की अलमारी में तुम्हारी कहीं जगह बची, लेकिन दिल में तुम हमेशा रहोगी, क्योंकि तुम सिर्फ एक डिक्शनरी नहीं थी, तुम तो हमारे स्कूल के दिनों की वो साथी थी जिसने हमें लफ्जों से दोस्ती करना सिखाया। चलो यार अब ज्यादा इमोशनल नहीं होते, तुम्हारी जैसी डिग्निफाइड दोस्त को चीजी बातें कहाँ पसंद होगी। लेकिन हाँ, एक दिन तुम्हें फिर से मिलूंगी मैं, बिना वाईफाई के, बिना ऑटो करेक्ट के, बस तुमसे एक पुरानी मुलाकात के लिए, तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट जो कभी तुम्हारे अंतर लफ्जों के मतलब निकाल लिया करती थी, लेकिन आज जिंदगी के मायने बताने के लिए कोई नहीं है सिवाय जिंदगी के। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I did not realize कि रानी मुखर्जी के सावलेपन की खूबसूरती की तारीफ करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में ये दूसरा गाना है जो उनपे बनाया गया है. कैसेट के साइड ए का चौथा गाना.
0: मिर्ची 90s कैसेट.
1: कहीं प्यार ना हो जाए मूवी से. सावरिया रे ओ सावरिया. वेल, जब फिल्म में इस गाने को पिक्चराइज किया गया है तो ऐसा दिखाया गया है कि इट्स एन इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन कि यू नो ये लोग गाना गा रहे हैं, स्टेज पे चढ़ गए हैं. एंड सबसे मजाकिया चीज इस पूरे गाने के अंदर इज मुनीष बहल, जिनको हमने पूरी जिंदगी या तो सादे रोल्स में देखा है या विलनस रोल्स में देखा है. एंड यहाँ पर ही इज टोटली इन टू द सीन एंड कैरेक्टर ऑफ अ कॉमिक जीजू. बट हाँ, ये बात भी सच्ची है कि स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने वाली रानी मुखर्जी रही है, जिन्होंने कि अपने सावलेपन को लेकर कभी कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई कि वो इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है या वो खुश नहीं है या वो इसको कवर करना चाहती है. अगर ये गाना उनके ऊपर बना है, उनके सावले रंग के ऊपर बना है, उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए बना है, दैट मीन्स कि रानी मुखर्जी owns everything that has to do with herself, her color, her personality, which is a big thing in the industry, जहां पर लोगों को उनके looks और color से judge किया जाता है. एंड आज तो हम डेफिनेटली इस बात के गवाह हैं कि एवरीबडी इंडस्ट्री में हो या ना हो, दे जस्ट वांट अ कोरियन स्किन. हालांकि हम इंडियंस हैं एंड वी वांट कोरियन स्किन. दूसरी चीज, ये ग्लूटाथायोन के टैबलेट्स, इंजेक्शंस एंड सीरम्स एंड व्हाट नॉट जो आ गए मार्केट में, उसको लेकर भी इतना ज्यादा रेज आना. एंड आई फील कि यार, जैसे हम हैं वैसा हम अपने आप को पसंद क्यों नहीं कर सकते. आई थिंक रानी मुखर्जी से ये चीज सीखना तब और आज भी वुड बी अ ग्रेट थिंग एंड अ ग्रेट बिगनिंग. चलो जी, नाउ विद दिस इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाऊंगी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अगला गाना यही वाला आ रहा. एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक. What is the ultimate fitness tip?
3: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आमतौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
2: Sleep well. Oh ho ho. फिर तो फिट होना मुश्किल है आमिर खान. आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Hello Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
5: office के toilet में toilet paper white नहीं yellow लगाओ, profit आएगा.
4: relative से advice लो तो कहते हैं
6: काम को time दो, 25 घंटे काम करो, dark circles होंगे तो future bright होगा.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ promotion fund के लिए, जिसके लिए आप 50% equity ले सकते हो.
7: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070 7687.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

0: क्या आप गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हैं? अगर हैं, तो हम क्या करें, हम खुद परेशान हैं भैया। हाँ जी, हम कौन से स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं, हम भी तो यही है, गर्मी तो है जबरदस्त, लेकिन कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तूफान लेके आ गया मस्त मौला गौरव। शाम के 4:05 होने वाले हैं, हालांकि 4 मिनट से आगे घड़ी बढ़ रही है।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: लेकिन गर्मी के इस मौसम से जिंदगी गाड़ी को आगे बढ़ाने में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। अभी तो जुलाई आया है दोस्त, अभी आगे आगे देखो अगस्त सितंबर में ह्यूमिडिटी कैसे रुलाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आ गए हम तो बातों की दुकान लगा देंगे, एंड कतर में क्या क्या होने वाला है अगले कुछ दिनों में सब समझा देंगे, और कैसे आप कतर में अपनी सेहत का ख्याल रखें ये हमें PHCC ने याद दिला दिया। कौन सी बॉल कतर स्टार लीग की बॉल बनने वाली है वो भी ऑफिशियल ये बता देंगे। कैसे कतर कैलेंडर ने कतर टॉय फेस्टिवल के बच्चों में बुला लिया है सारे के सारे, कह रहा है आ जाओ नानी घर नहीं गए दादी घर नहीं गए मेरे पास आ जाओ, ये सब कुछ यही बताएंगे। बस आप मस्त मौला गौरव के साथ रहिए और वीकेंड की वाइब यही सेट कीजिए। 89.6 मिर्ची वाली थॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: मिल गया
4: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद आया है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लगा?
4: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा यार रिक्शा
4: वाला,
2: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
4: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
0: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: हाय हाय, वन ऑफ माय फेवरेट वर्जन यार, ये इतना प्यारा लगता है, कोई गंदगी नहीं इस गाने में हनी सिंह के, क्योंकि मिर्ची ने इसे एकदम क्लीन बना दिया। यस, ये गाना मिलेनियर आपने यहाँ सुना किस शो पर?
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी, तो फिलहाल के लिए इतना ही कहना चाहते हैं। हाला समर अब पूरी तरीके से हमारे कतर के कोने कोने में, मॉल्स में, होटल्स में छा चुका है, और ये वो कैंपेन है जो दुनिया भर से हबीबी कम टू कतर कह रहा है लोगों को। यस, क्योंकि फैमिली फ्रेंडली एक्सपीरियंसेस पूरे कतर में हर मॉल में, हर होटल में आपको मिलने वाले। 1 जुलाई to 30th of September ये चलेगा, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप आइए, चाहे यहाँ का एंटरटेनमेंट देखने जाइए, आपको एज अ रेसिडेंट, एज अ विजिटर इतने खूबसूरत एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आपको यहाँ के डिफरेंट मॉल्स में मिलने वाली है जो शायद आप घूमने जाते हैं तो कहीं भी नहीं मिलती है। एंटरटेनमेंट जोन से लेकर बच्चों के लिए बहुत सारा प्ले जोन, एंड हर जगह शॉपिंग करते हुए कुछ डिस्काउंट वाउचर पाने का मौका, कुछ ना कुछ चल रहा है भैया। हाला समर ये वो कैंपेन है जो पूरे जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारे कतर में चलेगा, एंड विद अ स्पेंडिंग ऑफ मिनिमम कतरी 200 रियाल आप बहुत सारे अलग अलग रैफल ड्रॉ का हिस्सा भी बन जाएंगे। इस उम्मीद में कि इस बार आप अगर घर नहीं जा पाए हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप हाला समर में ही कतर में ही एज अ टूरिस्ट बन के घूमिए ना, कौन मना कर रहा है। हमें पता है आप हर हफ्ते ही घूमते हैं, लेकिन एज अ टूरिस्ट बनकर कतर को एक्सप्लोर कीजिए, मजा आएगा। मिर्ची थॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हाँ जी तुम ही आना, वरना कोई और आएगा तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। एक शानदार गाना खत्म हुआ और आपके साथ मस्त मौला गौरव आ गया। एक शानदार बात लेकर जो हुई है पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अजगाल की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत बड़े करियर में एक मेजर माइलस्टोन जो कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का है उसको पूरा कर लिया विद रीयूजिंग 98% वाटर। और ये कोई ऐसा वैसा 98% वाटर नहीं बोल रहा हूँ, ये है वो वेस्ट वाटर जो हमारे कतर के अलग अलग इलाकों से आता है और उसको वापस से रीयूज करना अपने आप में सस्टेनेबल को बढ़ावा देने जैसा 98% एक बड़ी कामयाबी। और ये बताता है कि किस तरह से हम वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर उस पर अपने एफर्ट मारकर एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी लाएं, साथ ही साथ कंट्री के उस विजन की तरफ भी अपना ध्यान रखें जहां पर हम अर्बन लैंडस्केप को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ 98% ऑफ वेस्ट वाटर को यूज कर दुनिया को हम एक तरह से एक राह भी दिखा रहे हैं। एंड इस पूरे के पूरी चीजों को इरिगेशन, ग्राउंड वाटर रीएम्प्लेसमेंट के लिए एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए यूज किया जा रहा है। एंड मुझे लगता है यार एक छोटा सा फर्ज हमारा भी बनता है। हमारे घर में जब मेहमान आते हैं, मैंने देखा कल्चर है यहाँ कतर में, छोटी छोटी बॉटल्स का हम यूज करते हैं, उसमें बच्चे थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर बॉटल वेस्ट होती है, उसको भी आप गार्डन में जाकर कहीं पौधों में डालिए, उसको भी वेस्ट मत होने दीजिए, क्योंकि आप दुनिया के उस इलाके में हैं जहां पर पानी की शायद सबसे ज़्यादा किल्लत है। और अगर ये आपको एबंडेंस में मिल रहा है तो वो यहां की हुकूमत की वजह से, यहां की उस प्लानिंग की वजह से जिसकी वजह से ये आपको मिल रहा है, उसका ज़रूर ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है अगली बार जब आपके घर में कोई गेस्ट आए और वो पानी की बॉटल में पानी छोड़ दें तो आप उसका सदुपयोग कीजिए, यानी कि काम में लाइए। मिर्ची थॉट
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: यस अरिजीत सिंह, शिल्पा राव के आवाज में घुंघरू टूट गए हैं तो किसका इंतजार कर रही है? खुद का पैसा लगाओ, बनवा लो। हाँ जी, लेकिन मैंने देखा है लोग ऐसे कहते हैं, अरे ये टूट गया, अरे टूट गया, मतलब कोई बोल दे कि अच्छा रुको हम बनवा देते हैं। फिलहाल एक चीज अगर कोई कर पाए तो कर दो, सूरज चाचू की ब्राइटनेस कम करने की बात करो।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। मतलब यार आपको, हमको लग रहा है गर्मी जो है 50 डिग्री टाइप फील दे रही है, हालांकि टेम्परेचर अभी भी 44 डिग्री सेल्सियस है, इसकी रियल फील इतने के ही अराउंड है एंड मिनिमम अराउंड 31 आ गया है। ह्यूमिडिटी का परसेंटेज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, 26% ह्यूमिडिटी। आज आपको मौसम एक नमी जरूर दिखाई देगी जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, लेकिन क्योंकि हवाओं की रफ्तार 21 किलोमीटर पर आर के आसपास चल रही है तो ठीक ठाक फील कराएगी। एक बार सूरज चाचू नीचे जाएंगे तो सुबह फिर सीधे दोपहर करने आएंगे। बस मोहब्बत नहीं कहेगा, पानी पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए एंड इस गर्मी से बचने का एक ही तरीका है, बॉस की निगाहों से बचकर ऑफिस के ठंडे कोने में एसी में नीचे बैठ के मजा लीजिए। मिर्ची शॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL Group of Company. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: John Abraham, आपके हिसाब से the top fit boys of the Hindi film industry.
3: First reference is always going to be Varun Dhawan and I'll tell you why. क्योंकि वरुण का जो physique है वो बहुत ही proportionate है. उसके legs बहुत ही strong है. Tiger Shroff, fantastic body. Ranveer Singh, extremely, extremely fit. And of course, Hrithik Roshan. Honestly, amongst all these, including myself, I think सबसे fittest इंसान हमारे industry में is Akshay Kumar. And I mean holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको Mount Everest पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who will survive and come out.
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार is the only person in the Hindi film industry जो by choice इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, It's hot.
0: Bollywood Bolder. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
5: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: अच्छी बांगड़ी। वैसे गजब गाना है ना, चूड़ी के ऊपर इतना खूबसूरत संजू राठौड़ ने गाया। लेकिन फिलहाल के लिए अब धीरे धीरे पार्टी मोड ऑन होगा। आज है थर्सडे नाइट, आने वाली है फिलहाल शाम के 5:07 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और ठीक आज से एक दिन के अंदर यानी कि कल शाम 7 से 974 बीच पर वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपने शायद इससे पहले कभी नहीं लिया। यस, अ नाइट अंडर द स्टार्स एट 974 बीच, जहां बच्चों के लिए है फेस पेंटिंग, आउटडोर मूवी स्क्रीनिंग, स्टोरी टेलिंग एंड फैमिली एक साथ बैठकर आराम से अपने घर से कुछ अच्छा बनाकर या ऑर्डर कर आप खा पी कर वहां पर एक मजा लेंगे। एंड ये सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है आपके लिए एट 974 बीच। अगर आप प्लान कर रहे हो तो नाइट अंडर स्टार 974 बीच में एडल्ट प्राइस 35 का 30 रियाल, किड्स फ्रॉम 6 to 14, 15। एंड इसके अलावा आपके लिए केयर टेकर्स के लिए भी एक एंट्री फीस है और स्पेशल नीड विजिटर्स के लिए बिल्कुल फ्री है ये। और अगर कार लेके अंदर तक माहौल बना के जाना है तो उसके लिए 150 रियाल के चार्जेस देने पड़ेंगे। 974 बीच पर होने वाला ये एक यादगार पल है और मुझे लगता है कतर में हर तरह का एक्सपीरियंस अगर आपने किया है तो एक बार ये नाइट अंडर द स्टार्स तो बनता ही है। 89.6 मिर्ची 1, कल की डेट है याद रखना, लेट ना हो जाओ मिर्ची शॉर्ट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. La firma la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं, मुझे ये बताओ भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत ने पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पर्स तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूं बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: एपी ढिल्लन और श्रेया घोषाल का सुंदर कॉम्बिनेशन सुनाया किसने? और जब बच जाए शाम के 5 तो आप वीकेंड की तैयारी कर ले जनाब, आखिरी घंटा चल रहा है और फिलहाल मेरे साथ सुन रहे हैं आप मेरा शो
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: एंड जब मेरे साथ हो तो जेब की बात करेंगे। सैलरी कली तो आई है, अभी तो टिक के वॉलेट में धूम मचाई है, मतलब घर भेजने तो रेट भी जबरदस्त है। ऐसा है, अगर आपको घर भेजना है तो 26 रुपए 14 पैसे भारतीय मुद्रा में मिल जाएंगे। यस, अगेंस्ट 1 कतरी रियाल यू विल बी गेटिंग इंडियन रुपीस 26.14। वही अगर हम बात करें पाकिस्तान रुपीस की जनाब, 76.85। हाँ जी, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.85 पाकिस्तान रुपीस। वही श्रीलंकन रुपीस अगेंस्ट 1 कतरी रियाल 92.08। अगर हम तपाई को नेपाल रुपीस का रेट करेगा दाजो बहिनी, आपको मिल जाएगा 41.69 का, खूब भालचा रेट है दाजो। हाँ जी, इसके बाद बंधु बांग्लादेशी टका दादा एक्ट रियाल के बदले 33.97, तो 33.97 रेट अच्छे बांग्लादेशी टका। तो मस्त मोल गौरव के साथ सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। इट्स

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
7: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
6: अभी कॉल करें 3100813।
8: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
9: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
6: आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: तैयार हो जाइए, ह्यूमिडिटी का पारा अब हमारे कदर में बढ़ने वाला है। हाँ जी, मस्त मौला गौरव के साथ चला है मेरा शो
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: और भाई कहा यही जा रहा है कि डे टाइम जहाँ काफी हॉट होने वाला है वही नाइट में इट विल बी वेरी ह्यूमिड। हाँ जी, और ह्यूमिडिटी का जब पारा चरम बढ़ता है तो सबसे ज्यादा उन लोगों को समझ में आता है जो ग्लासेस पहनते हैं। हाँ जी, स्पेक्स वाले लोगों, आपके लिए अब थोड़ी मुसीबत रहेगी, साथ में रुमाल जरूर रखिए। वेल, सनी कंडीशन जहां हमारे कतर में कंटिन्यू करेगी, वहीं कतर मेट्रोल डिपार्टमेंट का कहना है कि जुलाई 4 से काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी भी बढ़ने वाली है और इन सब के बीच हवाओं का भी जोर रहेगा। लेकिन ह्यूमिडिटी के बढ़ते ही हमारे और आपके लिए टेंशन थोड़ी बढ़ती है भैया, मतलब एक सेकंड के लिए बाहर निकलते हैं पसीने पसीने हो जाते हैं। वेल, गुड टाइम टू लूज वेट ऑल्सो। हाँ जी, तो वॉक वॉक करते रहिएगा, बॉडी को हाइड्रेट रखते रहिएगा। एंड फिलहाल के लिए पहली बार

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
2: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Our business is our business. None of your business.
5: Par didi, our entertainment is your entertainment.
6: Entertainment.
7: Qatar ka number one radio station.
8: 89.6
9: 89.6
10: 89.6 FM Mirchi.

तीन के तीन अंदर ही हैं। अरे बोले तो फीफा वर्ल्ड कप के होस्ट मस्त मौला गौरव 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के तीनों होस्ट नेशन कनाडा, मैक्सिको एंड USA। ये तीनों के तीनों अभी भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं, जहां अब तीनों का मुकाबला अलग टीमों से होगा। इतना ही कहना चाहता हूं कि एक शानदार टूर्नामेंट अभी तक तो देखने को मिला है, और राउंड ऑफ 16 में कनाडा, जहां अब कह सकते हैं हमारे गल्फ के सबसे बड़े चैंपियन मोरक्को से भिड़ने वाला अरब कप के, वहीं दूसरी तरफ मेक्सिको की मुलाकात इंग्लैंड से होगी और USA भिड़ेगा बेल्जियम से। वैसे आज जो मैचेस होंगे उनके बारे में बात कर लें। फीफा वर्ल्ड कप में आज मुकाबला होना है स्पेन और ऑस्ट्रिया का, शानदार मैच। यमाल के सारे फैंस रात 10 बजे आज टीवी के आगे होंगे। वहीं स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया का मैच कल देर सुबह 6 बजे शुरू होगा। आज देर रात 2 बजे जो मैच हम देखने वाले हैं वह है पोर्चुगल क्रोएशिया, मॉड्रिच एंड रोनाल्डो, दोनों के लिए एक आखिरी वर्ल्ड कप में मौका। ऑल दी बेस्ट, उम्मीद यही है कि रोनाल्डो फैंस आज निराश नहीं होंगे, आज रोनाल्डो उनको खुश कर देगा। तो बस देर रात जगना है एंड असली थर्सडे नाइट मनानी है दोस्तों, इस उम्मीद में कि आप फीफा वर्ल्ड कप के हर मैच को एंजॉय कर रहे हैं असली फुटबॉल फैन बनकर। मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा, लौटेगा सैटरडे की शाम शानदार में खुशखबरी लेकर, कौन जीता कौन हारा, मिर्ची इट्स हॉट।

0: emergency helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: Oh man, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: रख रख.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

वीकेंड ऑफिशियली ऑन और आज रात का सीन सिंपल है बॉस। एसी कम, डांस फ्लोर ज्यादा, क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड के साथ फुल वॉल्यूम, फुल सेलिब्रेशन, साथ में मिर्ची ओयोंतिका और वर्ल्ड कप फीवर भी बैकग्राउंड में चालू है, ब्लड स्ट्रीम में चल रहा है, गोल हो या ग्रूव, आज रात सब अलाउड है। चलो गर्मी बढ़ाते हैं, लेट्स बिगिन क्लब मिर्ची।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारे बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर, और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
6: दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर

वापस आ गए स्टेडियम वाले चांस और डांस फ्लोर वाले जंप्स लेके. टीचर रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ. व्हेनेवर देयर्स फुटबॉल वर्ल्ड कप देयर्स शकीरा. सो हियर्स द वर्ल्ड कप सॉन्ग जस्ट फॉर यू ऑन क्लब मिर्ची.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: लगा।
7: मिर्ची, इट्स हॉट।
8: अर्ज किया है
9: इरशाद, इरशाद

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Govinda, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
4: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
3: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
4: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
3: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
4: ये तीनों एक्टर्स ऐसे इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है? ये पेट है इनका। ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn? Arey yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. Phir Malabar Gold and Diamonds, golden summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
3: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
4: कैसे रुक सकता है?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

नहीं नहीं पीने के बाद सिर्फ डांस करो बातें नहीं. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एंड पीपल हु स्टिल वांट टू गिव लेक्चर्स आफ्टर ड्रिंक्स. ये है असली इमोशनल अत्याचार.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Mirchi Helpline, what is the question?
1: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
2: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए? तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: मिल गया
4: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लगा
4: नहीं वो? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू फोन मत रखना। हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा यार रिक्शा
4: वाला,
2: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
4: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM
10: Mirchi One. It's hot.
11: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
12: on a ride.
13: Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: लगा।
7: मिर्ची, इट्स हॉट।
8: अर्ज किया है
9: इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो. We're gonna go.
5: On a ride.

Ladies and gentlemen, you are still not ready for this.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री?
4: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन. ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट. ही कैन सर्वाइव एनी वे. अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट.
3: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
6: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा.
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
9: भाई क्या कर रहा तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
10: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070-7687.
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.
0: Mirchi.

0: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
1: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: लगा
7: मिर्ची। इट्स हॉट

0: हॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा।
7: मिर्ची, इट्स हॉट।
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride.
0: Club Mirchi.

वेले हो परफेक्ट क्लब मिर्ची रेडी है आपको ऑक्यूपाई करने के लिए. वेलकम बैक डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ. बनोगे हमारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर.

0: Fabien que j'encle les bébés bousses à y wapin. Mais t'as pas qu'elle fait tout le monde, fait tout fond. Fabien que j'encle les bébés bousses à y wapin. Mais t'as pas qu'elle fait tout le monde.
1: अब खेल खेल में क्लब मिर्ची अपने लास्ट लेग पे है, सो गिव अस एवरीथिंग यू गॉट. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ. गेम हो या ग्रुप, कॉन्फिडेंस हाई, कुछ मैटर नहीं करता, कोई कहे कुछ भी कहे.

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

नहीं नहीं पीने के बाद सिर्फ डांस करो, बातें नहीं. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका एंड पीपल हु स्टिल वांट टू गिव लेक्चर्स आफ्टर ड्रिंक्स. ये है असली इमोशनल अत्याचार.

वीकेंड ऑफिशियली ऑन और आज रात का सीन सिंपल है बॉस। एसी कम, डांस फ्लोर ज्यादा, क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड के साथ फुल वॉल्यूम, फुल सेलिब्रेशन, साथ में मिर्ची ओयोंतिका और वर्ल्ड कप फीवर भी बैकग्राउंड में चालू है, ब्लड स्ट्रीम में चल रहा है, गोल हो या ग्रूव, आज रात सब अलाउड है। चलो गर्मी बढ़ाते हैं, लेट्स बिगिन क्लब मिर्ची।

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल
4: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
3: मैंने सोचा
4: यार रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। 89.6
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go on a ride.

वापस आ गए स्टेडियम वाले चांस और डांस फ्लोर वाले जंप्स लेके टीचर रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ. व्हेनेवर देयर इज फुटबॉल वर्ल्ड कप देयर इज शकीरा. सो हियर इज द वर्ल्ड कप सॉन्ग जस्ट फॉर यू ऑन क्लब मिर्ची.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM Mirchi 1.
6: It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go
8: on a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
4: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
3: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिंद सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: Ladies and gentlemen.

नहीं नहीं पीने के बाद सिर्फ डांस करो, बातें नहीं. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनतिका एंड पीपल हु स्टिल वांट टू गिव लेक्चर्स आफ्टर ड्रिंक्स. ये है असली इमोशनल अत्याचार.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
4: on a ride.
0: Club Mirchi with Oyon Deka and DJ Richard. All the

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: लगा।
7: मिर्ची, इट्स हॉट।
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride.
0: Club Mirchi.

0: Hot Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
4: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
3: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
4: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
3: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
4: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं लोगों की, मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और कि पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका। ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
3: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Love Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
6: ऑन अ राइड
0: with Oyon Deka and DJ Richard. Only on-

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा?
2: हु इज दैट?
3: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारे गम पा। हमारे ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हैं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सा, स्टार्ट।
1: ओ, मिल गई मंजिल मुझे।
0: ऊँ चाहिए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go
7: on a ride.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: लगा।
7: मिर्ची इट्स हॉट।
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
9: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन,
12: इट्स हॉट।
13: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

साथ डांस फ्लोर सबका दिल लुट ले गया। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, लेट्स गो।

एनर्जी सुन रहे हैं तो जन्नत यहाँ वीकेंड की जन्नत का एड्रेस यही तो है। यहाँ पे डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपको अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं यार।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Burka, burka. Nabit wala burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत ने पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
2: तूने जेब काटी,
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूं बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। 89.6 89.6। इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
4: ऑन अ राइड
6: क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories. Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी.
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल.
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं.
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ.
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: लगा
7: मिर्ची. इट्स हॉट.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान,
0: खान। मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

वेले हो परफेक्ट क्लब मिर्ची रेडी है आपको ऑक्यूपाई करने के लिए. वेलकम बैक डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ. बनोगे हमारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है।
4: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
3: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
1: बॉलीवुड बोल्डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
6: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
5: Relative se advice lo to kehte hain.
7: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070-7687.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are-

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

वीकेंड को फुल पावर दिया, फुटबॉल फीवर को रिस्पेक्ट दिया और डांस फ्लोर को जस्टिस। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्टी तक। स्टे लाउड, स्टे सेफ। हियर इज योर साइन ऑफ ट्रैक।

चा मस्तानी चा बुरा कर दे हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।